सुप्रभात एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 12वीं तिथि। तदनुसार 3 अगस्त सन 2026 ईस्वी। आज का दिन हम सबों के लिए मंगलमय हो। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 और 29 सेकंड हो रहे हैं। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थलसेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। इस 14 घड़ी में समय सुबह के 6:05 और 5 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन शीर्षक है भाषाई एकता।
3: जिस देश की सभ्यता का इतिहास जितना पुराना है वहां उतनी ही विविधता व्याप्त है। सभ्यता के क्रम में ये गौरव की बात मानी जाती है। भारतीय भाषाओं में विभेद निरपेक्ष है पर उसका आंतरिक एकीकरण सापेक्ष है। भारत की भाषाओं में आंतरिक एकता है, व्यावहारिक लोकप्रियता है। संस्कृत भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की शब्दावली पर संस्कृत पूंजीभूत है। भारत में प्रचलित भाषाएं दो श्रृंखलाओं में बांटी जाती हैं, जिन्हें भारतीय आर्य भाषा या आर्यावर्ती भाषा तथा आर्येतर भाषा कहते हैं। ऋग्वेद को आर्य भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। उसकी भाषा को वैदिक संस्कृत कहते हैं। बाद में लौकिक संस्कृति भी विकसित हुई। अन्य वैदिक ग्रंथ तथा लौकिक संस्कृत के साहित्य भी हैं। इनके साहित्य की छाप अत्याधुनिक काल तक व्याप्त रहती चली आ रही है तथा इससे समस्त भारतीय साहित्य प्रभावित होता रहा है। कालांतर में पाली और जनसाधारण में अपभ्रंश भाषा विकसित हुई। अपभ्रंश ने भी कई विकसित रूप धारण किए तथा समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गई। स्थान विशेष के कारण इनके उच्चारण और प्रयोग में भिन्नता आती गई पर उद्गम का स्रोत एक ही है। प्रेरणा, प्रयोग और उद्गम के दृष्टि से आर्येतर भाषाएं भी भिन्न नहीं है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में तो साधारण बोलचाल में भी संस्कृत के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता है। मनोरम, विहंगम, जलम, नेत्रम, धनम, रूपम, युद्धम इत्यादि इत्यादि संस्कृत शब्दों का प्रयोग वहां साधारण बोलचाल की भाषा में होता है। उत्तर भारत में कम ही लोग इतने उच्च स्तर के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तमिल और मलयालम में समानता अधिक है। भारत की सभी भाषाओं में संस्कृत तत्सम और तद्भव शब्दों की भरमार है। दूसरे उदाहरण के रूप में जनगण मन एवं वंदे मातरम राष्ट्रीय गीतों को ले सकते हैं। यद्यपि ये बंगला भाषा की रचनाएं हैं पर संस्कृत से बिल्कुल अभिन्न है। भाव संप्रेषण के दृष्टि से ये भारत की अन्य भाषाओं से भी दूर नहीं है। यही खासियत महात्मा गांधी के भजन सज्जन जनते देने कहिए जो पीर पर आई जाने रे तथा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है आदि रचनाओं में भी है। कह सकते हैं कि भाषाएं भिन्न होने पर भी भिन्न नहीं है। सभी भाषाओं के सैद्धांतिक व्याकरण और प्रयोगात्मक नियमों में भी समानता है। स्वरों के आघात प्रतिघात में भिन्नता है पर मात्रा के रूप में भी स्वरों का प्रयोग होता है। उच्चारण के लिए भाषा विज्ञान के स्वस्थिर नियम है। शब्दों के विभिन्न रूप और स्रोत भी सभी भाषाओं में समान पाए जाते हैं। प्राणीवाचक शब्दों के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग और अचेतन पदार्थों के लिए नपुंसक लिंग होते हैं। वचन का विभेद भी वर्तमान है। कारक, वाच्य और कृदंत आदि का प्रयोग समान रूप से होता है। सभी व्याकरण, वर्ण, शब्द, वाक्य, छंद और विराम जैसे भागों में बटे हैं। शब्दों की अभिव्यक्ति में सहजता, कठोरता, माधुर्य, कर्कशता, करुणा, श्रृंगार, प्रेम, घृणा इत्यादि शैलियों का प्रयोग किया जाता है। पूजा शब्द का प्रयोग समस्त भारत में किया जाता है। भाषाओं में भिन्नताएं हैं पर उनमें आंतरिक एकता भी है। जरूरत इस बात की है कि हम महत्व किसे देते हैं, भिन्नता को या उनमें व्याप्त आंतरिक एकता को।
2: भाषाई एकता शीर्षक से आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। चुड़ैल घड़ी में समय सुबह के 6:10 और 11 सेकंड हो रहे हैं। आइए शामिल होते हैं ईश्वर भक्ति में। कार्यक्रम है वंदना।

और फिर लोटो का आपने सुना, आप सुन रहे वक्त संगीत का कार्यक्रम वंदना एफएम हजारी वक्त से। ये अगली पेशकश नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज में।

वंदना। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 6:40 और 13 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड की आज की कड़ी।

हाथ में अपनी वीणा लिए हरिगुण गाते हुए एक बार देवर्षि नारद नारायण के समक्ष क्षीर सागर जा पहुंचे। यद्यपि शिवजी ने नारद जी को कामदेव की करतूत पर अपनी विजय का हाल भगवान पर प्रकट न करने का परामर्श दिया था, फिर भी देवर्षि ने प्रभु से कामदेव का चरित्र कह सुनाया। प्रभु से ये बात छिपी न रही कि नारद जी को कामदेव पर विजय पा लेने का अभिमान हो गया है। भक्तों का कल्याण प्रभु का गुण है, अतः अभिमान के अंकुर को नारद जी के मन में से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 400 कोस विस्तार वाले एक माया नगर की रचना की और उसे वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। इस माया नगरी के राजा शील निधि ने अपनी अति सुंदर कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा। इस अनिंद्य सुंदरी का वरण करने के लिए अगणित राजा वहां आ पहुंचे।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 6:50 और 58 सेकंड हो रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाली मुख्य कार्यक्रमों के ऊपर।

अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग विविधा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे, 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9 बजे हम आपको ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे हम आपको पुनः ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। अपराहन 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:20 पर हम आपको पुनः ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर 3 बजे हम आपको पुनः ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। शाम 5:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती बारी। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अंगना। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से आपकी योजना। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी चाहत। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर। और रात 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज 8:09 जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। स्पॉटलाइट आप सुनेंगे रात 9:15 पर हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम 9:30 पर हम आपको ले चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात 10 बजे आप सुनेंगे रजनीगंधा 10:30 पर कार्यक्रम एक फिल्म से। रात 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और रोजाना की तरह रात 11:10 पर सभा का समापन होगा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। इस वक्त सुबह के 6:55 होने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। गीत सुनने से पहले सुनिए जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: की
1: जय हो।
0: देवों में महादेव की महिमा अपार है, इनका अलख जगाओ तो बेड़ा पार है।
1: जय हो जय हो जय हो।
0: सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, सुनिए जरा ये ध्यान से कथा है यथाह की, महिमा

लोक रंग अभी आप सुने थे लोक गीतों का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह सुबह के 7:21 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के तहत वार्ता जीने का हक। वार्ताकार हैं विकास कुमार।
1: जीने का हक। लोग कहते हैं कि हमारा भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन नहीं, उस वक्त हम अंग्रेजों के गुलाम थे और आज इस भारत जैसे पवित्र स्थान में रहने वाले जानवर हमारे गुलाम हैं। हम तो आजाद हो गए हैं, क्या इन्हें आजाद होने का हक नहीं? भारत सिर्फ हम इंसानों का नहीं है, इस मिट्टी में रहने वाले हर जीवों को पूरा अधिकार है कि वो आजाद रहे। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। उनकी नजरों में सिर्फ जनता ही उनकी प्रजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारे जीव जंतु भी उनकी प्रजा में सम्मिलित होने चाहिए। मेरा बस चलता तो मैं शेर को भी शुद्ध शाकाहारी बना देता, परंतु नहीं, ये प्रकृति के खिलाफ हो जाएगी। मेरे कहने का यह अर्थ है कि कुदरत ने जीने के लिए जो चक्र बनाई है उसे वैसे ही चलने दे, मनुष्य कुछ ना करे। जीवन में जीने के लिए सबों को हरी वस्तु खाने की आवश्यकता है, शेर को भी, किंतु उसकी आकृति कुछ इस प्रकार बनाई गई है जिसके कारण वो सीधे हरे चीजों को नहीं खा सकता, किंतु भूख तो उसे भी लगती है। इसलिए कुदरत ने जीने के लिए और धरती को सही से चलने के लिए दो चीजें बनाई, प्यार नफरत, शांति अशांति, चंचलता गंभीरता। ये तो अंदर की बात है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो है शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव। शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव हरे पत्ते और हरे वस्तु को खाते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ये कुदरत का खेल है, इसे हम नहीं बदल सकते, किंतु शाकाहारी जीवों को मारने और खाने का अधिकार हम मनुष्य को नहीं मिला है। सबों को जीने का पूरा हक है। सृष्टि में सत्य क्षण है मृत्यु। जिस किसी का भी जन्म हुआ है इस धरती में, वो सब एक न एक दिन मरेंगे। उन सबों को धरती छोड़ के जाना ही होगा। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, तो क्यों ना हम कुछ अच्छा करें धरती के लिए। जीने का हक की बात है तो जानवर और मनुष्य दोनों के लिए प्रकृति का सुरक्षित रहना काफी आवश्यक है। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। क्या बताऊँ आप, वहाँ की प्रकृति में प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग आ गया हूँ। बड़े बड़े वादियाँ से छोटे छोटे रास्ते, अपनी दो पहिया वाहन जब पहाड़ की ऊंचाई में चढ़ी तो मेरी आंखें चौंक गई। अपने पूरे जीवन में कभी भी वैसा नजारा नहीं देखा था। चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ, गर्मी के मौसम में भी पूरी हरियाली, सूरज का उगना, सूरज का डूबना, गेंदों के पेड़, चिड़ियों की चहचहाट। ऐसा लग रहा था मानो कभी न छोड़ के जाऊं वो जगह को। सारे दिमाग के बोझ हल्के हो गए थे। वहां की जितनी भी तारीफ करूं कम है। वहां पे ढलाई वाले घरों को उंगलियों में गिना जा सकता था। सारे के सारे मिट्टी के घर थे, छोटे छोटे बस्तियां जो एक ही आकार के थे, और वहां की सुगंध तो लाजवाब थी। सुबह सुबह 3 लोमड़ियों को भी देखा था मैंने। वहां के जानवर काफी फुर्तीले थे। गर्मी में वहां का नजारा इतना अच्छा था तो बरसात के दिनों में कितना अच्छा होगा। वहां के लोग भी प्रकृति की तरह साफ दिल के थे। मेहमानों की खातिरदारी ऐसे होती थी कि मानो खुद प्रधानमंत्री उनके घर पधारे हो। जब मैंने पूछा गांव वालों से यहाँ जमीन कितने में बिकती है, उन्होंने कहा 35,000 रुपए कट्ठा। मैं चौंक गया क्योंकि हमारे शहर हजारीबाग मटवारी में एके इंटरनेशनल होटल के बगल वाली जमीन जो पूरी गंदी है वो 60,00,000 रुपए कट्ठा में बिकती है। मेरी नजर में वे लोग बेवकूफ है जो रोड किनारे घर बना के अपने आप को महान समझते हैं। दुनिया की प्रकृति को खत्म करके बड़े बड़े इमारतें बनाई जा रही है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि मेरे दोस्त का वो प्यारा सा गांव में भी लोग इमारतें ना खड़ी कर दे। उस गांव में 4 पहिए वाले गाड़ी नहीं चलती, इसलिए वहां की प्रकृति काफी अच्छी है। सिर्फ उस गांव में एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। अगर शहरों में पेड़ की कटाई ऐसे ही चलती रही तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब गांव में जमीन की दाम 60,00,000 रुपए कट्ठा होगी और शहर को कोई पूछेगा भी नहीं। अगर कभी प्यार करने का दिल करे तो प्रकृति से कर लेना। हम सबको माटी का घर बनाना चाहिए और चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना चाहिए और जानवरों को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि सबको जीने का हक है। और प्रकृति सही रहेगी तो हमारा दिल और दिमाग दोनों सही रहेंगे। अगर हम मांस नहीं खाते तो हम कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। दोस्त के घर बिताए गए उन 13 घंटों ने मुझे काफी कुछ सिखाया। इस धरती में सबसे साफ दिल जानवरों का ही है। अगर हम इंसान उन्हें मार देंगे तो दुनिया में सिर्फ पापी दिल ही बचेंगे, फिर हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हमें मिलकर इस प्यारी सी धरती को स्वर्ग बनाना चाहिए। अगर मेरी बात की जाए तो आज तक मैंने एक मच्छर भी नहीं मारा। मैं प्रकृति से बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी करना चाहिए। हमारे धरती में बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है, वो है बलि की परंपरा। मनुष्य बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं और वहाँ गचते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि मेरा नौकरी लग जाए भगवान, मैं बकरे की बलि चढ़ा दूंगा। कुछ लोग कहते हैं, हे भगवान मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, अगर बेटा होगा तो मैं 8 बकरों की बलि चढ़ाऊंगा। और भी ऐसी काफी सारी मन्नतें हैं जिसमें बलि चढ़ाई जाती है। क्या उन्हें ये लगता है कि भगवान को बकरे की बलि चढ़ाएंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुरानी कथाएं सत्य है तो देवी पार्वती ने काली और दुर्गा का रूप इसलिए लिया था क्योंकि वे असुरों का विनाश कर सके। उन्होंने यह संदेश हमारे लिए छोड़ा था कि कभी भी कोई गलत कार्य मत करो, अगर गलत कार्य करते हो तो कोई ना कोई तुम्हें दंडित करने अवश्य आएगा। और हमारे यहाँ के बुजुर्ग ये सोचते हैं कि उन्होंने असुरों का सर धर से अलग किया था, उन्हें मांस बहुत पसंद है, अगर हम उन्हें मांस का भोग चढ़ाएंगे तो वो हमें कभी कोई दुख नहीं आने देंगे। मैं भगवान से जल्दी कुछ मांगता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है बिना मेहनत किए मुझे कुछ भी नहीं मिलेगी। सिर्फ मुझे ही नहीं, बिना मेहनत किए किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगी। और कभी मैं भगवान से कुछ मांगता भी हूँ तो सिर्फ छोटी सी चीज मांगता हूँ, और बदले में मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर ये मुझे चीज मिल जाए तो मैं आपको 1 रुपए वाली इक्लियर ट्रॉफी चढ़ा दूंगा। प्रकृति ने जीवन का अधिकार हर किसी को दिया है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु हो या मनुष्य। हमारे संविधान में भी सभी को संरक्षित करने का दिशा निर्देश उपलब्ध है। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी का भी मूल मंत्र यही था कि सभी मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे सुरक्षित रहें ताकि हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे। जीवन का एक चक्र है, यह तभी रहेगा जब सभी का जीवन सुरक्षित रहेगा।
0: जीने का हक शीर्षक से आप सुन रहे थे वार्ता, वार्ताकार थे विकास कुमार, कार्यक्रम था विविधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर।

हमाकाशवाणी के हवारी बाग केंद्र से बोल रहे हैं एफ एम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:29 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगर फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, इसे 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 7:30 हो चुके हैं। पेशे खदमत है अगर फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। ये प्रोग्राम की शुरुआत में सुनिए फाल्गुनी पाठक का ये गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत एफएम हजारीबाग से। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए अलीशा शिनाई की आवाज़ में।

0: गीत संगीत अभी आप सुने थे अगर फिल्म एल्बम के गीतों का हमारा ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 8 बजने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, उसके बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: It's 8 o'clock.

0: बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी, इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।

0: खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today.

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, जेपीएससी विवाद और झारखंड की स्थिति से कराया अवगत। अमृत भारत योजना में राजघरसावां स्टेशन का होगा आधुनिकीकरण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी जानकारी। झारखंड के 57 अन्य स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। जामताड़ा मुठभेड़ में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर, पुलिस हिरासत में मारा गया दूसरा बड़ा अपराधी। सावन की पहली सोमवारी आज बाबा नगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 2 लाख कांवरियों के जलाभिषेक का अनुमान। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की वर्तमान स्थिति और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने झारखंड लोक सेवा आयोग की नियुक्ति परीक्षा मामले में सीआईडी की जांच की जानकारी भी दी। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र संगठनों के आंदोलन से गृहमंत्री को अवगत कराया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजघरसावां रेलवे स्टेशन का लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देशभर में इस योजना के तहत 1340 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें झारखंड के 57 स्टेशन भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने बोकारो जिले के 4 क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए आईटीआई मोड़ से जोधाडीह मोड़ तक फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने से चास और बोकारो स्टील सिटी के बीच यातायात व्यवस्था सुगम होगी तथा जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
5: बोकारो जिला प्रशासन का एक उद्देश्य ये था कि प्रिंट हो रहे हैं, जो जाम लग रहे हैं, इन सब चीजों को दूर करना बहुत जरूरी था। और आप देखेंगे कि इनको प्रस्ताव बनाकर हम लोगों ने दिया। जिला सुरक्षा समिति का जो प्रस्ताव है उसको करना सभी डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है। मुझे बहुत खुशी है कि इस पर एक्शन लिया जा रहा है।
4: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। कल रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला। छात्रों ने सरकार से पारदर्शी जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई।
6: जिस तरह से बीएससी में धांधली हो रही है, सीजीएल में धांधली हो रही है, जेडब्ल्यूसी में धांधली हो रही है, जेल में धांधली हो रही है, इन तमाम मांगों को लेकर सीबीआई जांच करवाने की बात है, बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। 26 सालों से हम लोगों को पूर्वक बनाकर रखा गया है, धोखा दिया जा रहा है। कोई भी सरकार हो, अब हम लोग रुकने वाले नहीं है और झुकने वाले नहीं है, लड़ेंगे और जीतेंगे।
4: आयकर विभाग का निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर 4 दिन तक चला सर्वे पूरा हो गया है। विभाग के अनुसार सर्वे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। जांच में कथित तौर पर अस्तित्वहीन कंपनियों से खरीद और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के भी साक्ष्य मिले हैं। आयकर विभाग ने बताया कि कंपनी 200 करोड़ रुपए के नकद खर्च का संतोषजनक विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2 विशेष परीक्षा ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। रांची से परीक्षा स्पेशल 3 से 22 अगस्त के बीच 15-15 फेरों के लिए संचालित की जाएगी। ये ट्रेनें झारखंड, बिहार और ओडिशा के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। रेलवे के अनुसार राउरकेला रामगढ़ कैंट राउरकेला परीक्षा स्पेशल 17 से 22 अगस्त तक निर्धारित तिथियों में चलेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
7: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
8: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
9: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
8: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आप

0: दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की कल देर रात जामताड़ा जिले में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उसे साहिबगंज मंडल कारा से धनबाद जेल स्थानांतरित किया जा रहा था। रास्ते में पुलिस वाहन का टायर पंचर होने के बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्टिंग के दौरान उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर फायरिंग करने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह और जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू सिंह ने घटना की पुष्टि की है। जमशेदपुर के परसुडीह कैनाल से मिले महिला के शव मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि शादी के दबाव से परेशान होकर आरोपी ने महिला की हत्या कर शव कैनाल में फेंक दिया था।
2: एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ। अनुसंधान में ही ये पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है दासमत बस्के। अनुसंधान में जो सामने आ रहा है वो ये है कि इनका कुछ रिलेशन था, ये पहले भी मिलते जुलते रहे थे। महिला द्वारा उस पर शादी का दबाव बनाया गया, इस तरीके की बातें अभी तक सामने निकल गया।
1: सावन की पहली सोमवारी को आज राज्य भर के शिवालयों में श्रद्धालु जलार्पण के लिए उमड़े। पहली सोमवारी पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रात 1 बजे ही श्रद्धालुओं की कतार नंदन पहाड़ तक पहुंच गई थी। मंदिर प्रबंधन के अनुसार आज लगभग 2 लाख कांवरियों के जलाभिषेक का अनुमान है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में आज पहली सोमवारी के साथ श्रावणी मेला 2026 का आगाज हो गया है। सुबह ठीक 3:05 पर पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ी है। बोलबम हर हर महादेव के जयकारों से पूरा देवघर गूंज रहा है। मंदिर परिसर और कांवरियां पथ पर लंबी कतारें देखी जा रही है। पहली सोमवारी को करीब 2 लाख कांवरियों के जलाभिषेक कराने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। सीसीटीवी एवं ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। आशीष कुमार अंबस, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
1: वहीं रांची के पहाड़ी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में सुबह से विशेष पूजा और जलाभिषेक जारी है। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 5 दिनों तक जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित कुंबाटांड गांव में धान रोपाई के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 3 युवतियां घायल हो गईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को बोकारो सदर अस्पताल पहुंचाया गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेल 2026 का रंगारंग समारोह के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में राष्ट्रमंडल ध्वज भारत को सौंपा गया, जिसके साथ ही अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा मौजूद रहीं। भारत ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी समृद्ध विरासत की झलक भी पेश की। और अखबारों की सुर्खियां, राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण की सुर्खी है, कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा मुठभेड़ में ढेर। प्रभात खबर की सुर्खी है, गृहमंत्री से मिले राज्यपाल, दी जेपीएससी प्रकरण की जानकारी। हिंदुस्तान की लीड है, पहले सोमवारी आज देवघर में उमड़े भक्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, जेपीएससी विवाद और झारखंड की स्थिति से कराया अवगत। अमृत भारत योजना में राजखरसावां स्टेशन का होगा आधुनिकीकरण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी जानकारी, झारखंड के 57 अन्य स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। जामताड़ा मुठभेड़ में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर, पुलिस हिरासत में मारा गया दूसरा बड़ा अपराधी। सावन की पहली सोमवारी आज बाबा नगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 2 लाख कांवरियों के जलाभिषेक का अनुमान। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में इस वक्त सुबह के 8:44 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 MHz पर सुबह के 8:45 हो चुके हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: राम तेरी गंगा वाली लीजिए। मॉर्निंग मेलोडी प्रोग्राम का पहला गीत सुनिए, इसी फिल्म से आवाज है लता मंगेशकर।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और निजी प्रोग्राम के आखिर में सुनिए फिल्म हिना का गीत। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर, मोहम्मद सईद और साथियों की।

सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर, मोहम्मद सईद और साथियों के गाए हुए इसी गीत के साथ कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यहीं समाप्त होता है। मॉर्निंग मेलोडी, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे फरहान अख्तर, अभय देओल, ऋतिक रोशन और साथियों की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
1: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दलेर मेहंदी, चित्रा और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से। प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूं।

0: मुझसे किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना। सुहानी रात ढल चुकी।

यूं तो मजरू और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था। और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं? बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये है विविध भारती।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: आकाशवाणी के हवारी बाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:01 और 37 सेकंड हो चुके हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।
1: 10, 9, 8, 7, 6,

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है। आप ही के इस कार्यक्रम में एक घंटे के इस दिलचस्प जानकारियों और संगीतमय कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं अली शम्बीर, कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। दोस्तों और प्यारे श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं आज के इस सुविचार के साथ। सादगी और सत्य दोनों में एक ही समानता है, दोनों को सजाने की जरूरत नहीं होती।

दोस्तों आइए अब थोड़ी चर्चा करते हैं एक बेहद अहम मौजू यानी एक विशेष महत्वपूर्ण और बेशकीमती विषय पर। और आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती और मूल्यवान जो चीज है जिसे रुपये पैसों से खरीदा नहीं जा सकता और अगर कहीं की जान देकर भी नहीं खरीदा जा सकता तो इसमें कोई अतिशयोक्ति कोई मुजायका नहीं होगी। जहां दोस्तों दुनिया की वो चीज है समय। समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। अगर कोई कुछ देर के लिए अपना समय हमें देता है तो ये उसका बड़ा एहसान होता है, हमें उसका तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी बात की कि समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ न गवाएं। दोस्तों समय सबसे कीमती और मूल्यवान धन है क्योंकि इसे एक बार खोकर दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। यह सच है कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता और सच तो यह है कि ये हर पल हर लम्हा हमारे जीवन को कम कर रहा होता है।

वस्तु धन दौलत या वस्तुएं खोने पर वापस मिल सकती हैं, लेकिन गुजरा हुआ एक पल, एक सेकंड भी दुनिया का कोई इंसान वापस नहीं ला सकता। दोस्तों, जो लोग समय की कदर करते हैं और हर काम तयशुदा वक्त पर करते हैं, वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य और मंजिल को पा ही लेते हैं। सफलता और कामयाबी उनके कदम चूमती ही है। दोस्तों, इंसानी जिंदगी महदूद है, यानी मनुष्य का जीवन सीमित है, इसलिए हर पल का सही इस्तेमाल ही बुद्धिमता और अकलमंदी है। जिंदगी का एक पल भी व्यर्थ गंवाना बड़ी जहालत, नादानी और बेवकूफी है। दोस्तों, समय का सदुपयोग कुछ यूं किया जा सकता है, अपने दिन भर के कामों की एक फहरिस्त, एक सूची या लिस्ट बनाएं और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। कल पर कोई भी काम न टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कहावत भी बड़ी मशहूर है, जो कल करो सो आज और जो आज करो सो अब। अब इस कॉल पर कायम रहकर अपनी मंजिल भी बड़ी आसानी से पाई जा सकती है, और समय का दुरुपयोग के बजाय सदुपयोग तो होना ही है। अपने कामों की प्राथमिकता तय करें, फालतू की गतिविधियों और सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने से बचें।

अब एक नजर आज की तापमान और मौसम पर। तापमान के सिलसिले में आज अधिकतम तापमान होगा 28.5 डिग्री सेल्सियस दिन में और रात का यानी न्यूनतम तापमान होगा रात में 22 डिग्री सेल्सियस। मौसम के ताल्लुक से आज भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की होने की भी संभावना है और बारिश तो की बूंदें टप टप तो हो ही रही हैं और जिस्म को भिगो भी रही हैं।

0: देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग।
2: हेलो हजारीबाग, अभी आप सुन रहे थे हमारे कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी में इस समय सुबह के 10:11 को हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले हरिओम शरण की आवाज में ये भजन आपको सुनवाते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में तुम आए, इस एल्बम का गाना जावेद अख्तर के बोल, राजू सिंह का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: पंकज उधास की आवाज, शब्दकार मोहम्मद अलवी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें RS हरियाणवी रतन के बोल हैं। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का, एल्बम तस्वीर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

सवाल है वसल पर, मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाल है वसल पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाल है वसल पर उनको उदू का खौफ है इतना,

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी। शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, दिलीप वर्मन का, संगीत एल्बम रात।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमाल खान की आवाज, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

पहला नशा इस एल्बम का गाना सुनिधि की आवाज में, नक्श लैलपुरी के बोल, संगीत है ललित का। ये है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री

0: से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, संगीत रवि का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं के बोल, संगीत है रवि का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, संगीत है रवि का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: दो बदन फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: रफी की आवाज में संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम जहां से,

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में, संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफर कार्यक्रम में। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज फेसबुक पर जो टेक्स्ट, जो इबारत हमने पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हमारे संस्कारों ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी काम की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर की जाती है। किसी अनजान शहर में जब कोई अकेला व्यक्ति अपने दिल और निगाहों को चौकन्ना रखकर जिंदगी की तलाश करता है और उससे घर आने की गुजारिश करता है, तब कई बार परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। रात भीगी भीगी हो, नदी नारे उफान पर हो, चंदा की चांदनी भी सीने में जलन पैदा करती हो, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से हमें ऐसा सुकून मिलता है जैसे तपती गर्मी में तरुवर की छांव हो। साथ ही ये आश्वासन भी मिलता है कि एक दिन सुखों की गागर हमारा स्वागत जरूर करेगी। तब सीने की जलन शांत होकर कोई गाता सा प्रतीत होता है और मन ख्वाबों के गलियारों में सो जाता है। ये आज की इबारत है, आपने पढ़ी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, प्रार्थना से संबंधित बातें लिखी और आज के गानों की क्या खासियत है ये भी उन्होंने बातें लिख करके भेजी। हमारे एक साथी की बात है कि आज की इबारत भारतीय जीवन दर्शन को चिन्हित करता आदर्शों का समागम है। ये सत्य को उजागर करता है कि भारतीय मानस में हर यात्रा, चाहे वह भौतिक हो या जीवंत आस्था के सहारे ही शुरू होती है। विपरीत परिस्थितियों में जब प्रकृति भी बैरी लगने लगे, तब प्रार्थना इंसान के लिए अंतिम और सबसे सशक्त सहारा बनती है। ये इबारत अकेलेपन के दर्द, आस्था की शक्ति और उम्मीद के सूर्योदय की एक भावपूर्ण यात्रा है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि आज की इबारत जीवन की यात्रा का सुंदर चित्रण है, जहां हर कदम पर विश्वास, संघर्ष और उम्मीद साथ चलते हैं। जब इंसान किसी अनजान राह पर होता है तो सबसे बड़ा सहारा उसके संस्कार और ईश्वर पर उसकी आस्था होते हैं। ईश्वर का स्मरण मन को वैसी ही शीतलता देता है जैसी तपती दोपहर में किसी घने तरुवर की छांव। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है कि एक दिन सुखों की गागर भी हमारे द्वार पर दस्तक देगी। धन्यवाद आपका। जी हाँ, आस्था की बात तो है ही, लेकिन साथ ही आज के गानों की एक और विशेषता है जो आपने समझ ली है। हम दोनों फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। लता जी की आवाज है इसमें, सही लुधियानवी के बोल हैं और संगीत जयदेव का। जी हाँ, आज संगीतकार जयदेव को हम याद कर रहे हैं।

एक हमारे साथी की ये बात है कि सावन का पहला सोमवार देवों के देव महादेव की जय और इधर सुरीले सफर में जयदेव की सुरीली धुनों से सजे गीतों का आगमन, क्या संयोग बना है। आज तो कार्यक्रम में जयदेव का उद्घोष रहेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि सच्ची भक्ति और इंसानियत इंसान को ऊंचा उठाती है। भगवान किसी से मिलावट या दिखावा नहीं मांगते, बल्कि वे हमेशा सच्चे और ईमानदार भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति विश्वास इंसान के दिल से अहंकार, ईर्ष्या और नफरत को मिटाकर दया, प्रेम और इंसानियत जगाती है। ये मनुष्य को नैतिक और अच्छा इंसान बनाती है, जिससे समाज में उसका और दूसरों का जीवन सुधरता है। एक हमारे साथी की ये बात कि आज श्रावण मास के पहली सोमवारी है, इसलिए भोलेनाथ के

मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। विविध भारती के तमाम मित्रों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है शुभकामना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक हमारे साथी की बात कि भक्ति की शक्ति से पूर्ण सुक्ति चित्रित करती इबारत की पंक्ति है, आसक्ति की युक्तियों में भटकते व्यक्ति के विभिन्न उक्तियों को युक्ति युक्त तरीके से ईश्वर सम्मुख समर्पण का मार्ग दर्शाती इबारत है, संगीतमय सफर आनंदित करेगा, ये इस बात का हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपनी जो इबारत है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए गाने भी हैं और हम आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जो ईश्वर की भक्ति है या ईश्वर का नाम है या यूं कहें कि उनके ऊपर जो विश्वास है वो कब कब कौन सी परिस्थितियों में आपको बहुत संबल देता है, कब आपको लगा कि बस उनके सहारे ने हमें बहुत बड़ा संबल दिया, ये आप हमें बता सकते हैं। घरोंदा फिल्म का गाना भूपिंदर सिंह की आवाज में।

0: के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा मामले में छात्रों का आंदोलन और तेज छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े। जेपीएससी अनियमितता मामले में सीआईडी का कई ठिकानों पर छापा, पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से चौथी बार हो रही पूछताछ। पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। झारखंड पर्यटन को नई सौगात, दलमा में इको रेस्ट हाउस शुरू, पर्यटकों के लिए दलमा में खुला नया इको रेस्ट हाउस। और शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर रामगढ़ के लुकैयाटांड में होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन आज 10वें दिन भी जारी है। रांची के मोराबादी स्थित धरनास्थल पर छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। सीबीआई जांच की मांग कर रहे आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक सत्याग्रह और भूख हड़ताल जारी रहेगी। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में झारखंड सीआईडी और रांची पुलिस ने राज्य के कई जिलों में छापेमारी की है। रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू और बिहार के कुछ स्थानों पर कोचिंग संस्थानों और आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। जांच एजेंसियों ने यह कार्रवाई मामले में गिरफ्तार अभय तिवारी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर की। रांची के नामकुम और धुरवा सहित कई इलाकों में देर रात तक तलाशी अभियान चला। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है तथा जांच जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते आज चौथी बार सीआईडी के समक्ष पेश हुए। जांच एजेंसी अन्य आरोपियों से पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर उनसे सवाल कर रही है। सीआईडी का कहना है कि साक्ष्यों के सत्यापन के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने पर भाजपा अड़ी हुई है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सीआईडी जांच पर सवाल खड़े किए हैं।
1: छात्र लगातार लंबे समय से बारिश में, धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा और प्रियंका दीदी की नजरें इधर नहीं जा रही। इसे कहते हैं दोगलापन की राजनीति। नीट के मुद्दे पे ये मुखर थे, लेकिन इनके राज में जब पेपर लीक हुआ तो ये मौन साध लिया। पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी है। एक वृहत आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे।
0: वहीं कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है, मामले में गिरफ्तारी भी हुई है।
2: जेपीएससी के मामले में सरकार ने पूरी तरह पारदर्शिता के साथ कार्रवाई, और सीआईडी सरकार का अंग नहीं है, राज्य का अंग है। प्रतिपक्ष के नेता हैं बाबूलाल जी, जब उनको राज्य की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो इस राज्य की जनता को मोदी जी की जांच एजेंसी सीबीआई पर कैसे भरोसा होगा। हमने गिरफ्तारी भी सुनिश्चित, हमने एजेंसियों पर कार्रवाई भी की है।
0: सावन माह की पहली सोमवारी पर रांची सहित झारखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रांची के पहाड़ी मंदिर, देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, कोडरमा के झरना कुंड धाम और खलारी कोयलांचल समेत कई शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। चतरा जिले में बिरसा प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 2% किसानों ने ही फसल बीमा कराया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो ने बताया कि सरकार ने बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निकटतम प्रज्ञा केंद्र पर जाकर फसल बीमा कराएं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने वाले पर्यटकों के लिए मकूला कोचा में अत्याधुनिक इको रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि पर्यटन दलमा वाइल्ड लाइफ और झारखंड पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकेंगे। राज्य सरकार करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से दलमा क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है।
3: वन विभाग के लिए, सरकार के लिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रमोट करता है उसके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ आने वाले पर्यटक है। अलावे इसको विभिन्न जगहों पर टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए नहिंदिया में ग्लास ब्रिज की बात चल रही है, खेतरातू में ग्लास ब्रिज की बात चल रही है, आने वाले समय में योजनाएं पाइपलाइन में भी।
0: लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन तथा आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली आयोजित की जाएगी। आदिवासी नेता और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने बताया कि इसे लेकर 6 से 18 अगस्त तक राज्यव्यापी जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।
4: 30 अगस्त आदिवासी एकता महाजुटान रैली है। 4 तारीख के बाद में पूरे झारखंड का दौरा करेंगे। परिसीमन के बारे में लगातार हम लोग कई मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। परिसीमन का विरोधी हम नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आदिवासियों का सीट घटे नहीं, आदिवासियों का सीट बढ़े।
0: झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने बोकारो जिले से लापता 3 लोगों की तलाश के लिए राज्य भर में ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है। सीआईडी ने सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नोटिस के बाद देश भर की पुलिस को भी तीनों की तलाश में सहयोग करने को कहा गया है। शेयर बाजार आज सुबह के सेशन में घरेलू इक्विटी इंडेक्स में लगभग 0.8% की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 654 अंक चढ़कर 78,748 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 211 अंक बढ़कर 24,595 पर आ गया। सराफा बाजार, राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ के निमरा और लुकैयाटांड में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिवंगत शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि कल उनके पैतृक गांव रामगढ़ के निमरा लुकैयाटांड में मनाई जाएगी। इस अवसर पर भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री और नेता शामिल होंगे और लुकैयाटांड स्थित सोना सोबरन स्कूल के प्रांगण में स्थापित गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ग्रामीणों ने तैयारियों की जानकारी दी।
5: 4 अगस्त को हमारे गार्जियन विश्वम गुरु जी का प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जिले भर नहीं, पूरे राज्य भर, पूरे भारत वर्ष का एक तमाम यहाँ पे लोग लुकैयाटांड में पहुंचेंगे।
0: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 14 से 16 अगस्त तक आयोजित होने वाली थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के

कार्यालयों में उमड़ी आस्था, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। झारखंड पर्यटन को नई सौगात, दलमा में इको रेस्ट हाउस शुरू, पर्यटकों के लिए दलमा में खुला नया इको रेस्ट हाउस और शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर रामगढ़ के लुकैया टाण में होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियां शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती है, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो मैं दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरिया फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाजें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा ज़रूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप जरूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज़्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन या फिर यूं कहें कि शुरुआती जीवन जहां हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या

फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है, और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफर ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का पांचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाज़ें हैं।

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया।
1: एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना, और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरी स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफर कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है, नजर ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाजें, मुख्य आवाजें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए, सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी मैं, और जितनी मधुर आवाज है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है। बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है। फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है। जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशुदास की आवाज में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, आपने प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी भंवरे पर आधारित है। सुबह की पहली किरण के साथ जब ओस से भीगे फूल मुस्कुराते हैं, तब सबसे पहले उनका हाल पूछने भंवरा ही आता है। वो फूल को तोड़ता नहीं, ना ही चोट पहुंचाता है, केवल उसके पास बैठकर उसकी सुगंध को महसूस करता है और अपनी मधुर गुनगुनाहट से उसका अभिवादन करता है। ये उसका अपनापन है। भंवरे की गुंजन हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें मधुरता बनी रहनी चाहिए। वो कभी शिकायत नहीं करता कि उस फूल में रस कम है और उसमें अधिक रस है। भेदभाव नहीं करता, वो हर फूल को समान प्यार करता है। प्रकृति का वो अनूठा संगीतकार है जो बगिया में गुनगुनाकर जीवन का राग छेड़ देता है।

भंवरा जब उड़ता है तो लगता मानो हवा ने कोई धुन ओढ़ ली हो। उसकी गुनगुनाहट केवल एक स्वर नहीं बल्कि प्रकृति के हृदय से निकली प्रेम वीणा का मधुर आलाप है। भंवरा जब कलियों पर मंडराता है तो लगता है वो कवि है, फूलों की पंखुड़ियों पर कविता लिखता फिर रहा है। उसकी हर उड़ान एक गीत है और हर ठहराव एक कविता है और हर गुनगुनाहट प्रकृति की अनकही भावनाओं का अनुवाद। भंवरों से अगर हम सीख लें तो रिश्ते और भी सुंदर हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में मुस्कान, प्रेम और अपनापन देकर हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हम किसी का मन महका सकते हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। फूलों में सौंदर्य है, कांटों को देखोगे तो फूलों के सौंदर्य की सुगंध से वंचित रह जाओगे। हमेशा अच्छाई की खोज करो, बुराई की नहीं।

भंवरा पंखुड़ियों को छूता है, खुशबुओं से बातें करता है और रंगों की दुनिया में प्रेम संदेश लिख जाता है। भंवरा शायद जानता है फूलों की उम्र बहुत छोटी होती है, वो पूरी आत्मीयता से इनके संग जीता है। हमें पता है हमारी जिंदगी की गाड़ी कब तक चलेगी, रुकेगी, लेकिन हम अपनों से आत्मीयता नहीं रखते। कल किसने देखा है, जो आज है उसी में अपनों संग प्रेम से जी लें। भंवरे की छोटी छोटी उड़ानें, चाहे वो गुलाब पर हो या चमेली सरसों के पीले खेतों में हो, वो जीवन का सत्य सिखाती हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शोर नहीं होता और न दिखावा, एक व्यवहार के मीठे बोलों की मिठास होती है जो बिना कहे भी दिल तक

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रक्रियाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने

0: www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5,00,000 से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक

0: कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज मोहम्मद रफी की, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: हाय ये पकड़, हाय हाय हाय तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद आसमां के,
0: हाय हाय गुरूर इतना,
1: हाँ हाँ गुरूर इतना,
0: उफ ये अदा है ये नया।

0: या
1: हाय,
2: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आए हाय।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म से सुरैया की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गंभीर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर कर दिया गया।
1: जिस अभ्यर्थी के 300 में 299 मार्क्स है उसका चयन नहीं, अलबत्ता 300 में 17 मार्क्स जिसका है उसका चयन। बड़े मात्रा में नियुक्ति घोटाला हुआ, बाकायदा एक होटल को लीज में लेकर वहाँ एंसर सीट लिखवाई गई और तभी भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनका फ्यूचर खराब हुआ। तो गुलाम कर रहे हैं, 10 दिनों से धरने बैठे हैं, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे संवाद करने नहीं गया।
0: इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 6.5 वर्षों के कार्यकाल की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा देना चाहिए।
2: घेराव करने की सोच रहे हैं, जांच एजेंसियां हैं, निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और सीआईडी के विरुद्ध हम आंदोलन पर गंभीरता से सोचें।
0: इधर जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची, बोकारो और पलामू के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच टीम ने पूर्व जेपीएससी सदस्य के आवास, कोचिंग संस्थान और शिक्षकों के परिसरों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। यह कार्रवाई गिरफ्तार आरोपी अभय तिवारी से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की गई है। इसी कड़ी में झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज सीआईडी मुख्यालय में चौथे दिन पूछताछ हो रही है। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा और अन्य नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को राजभवन द्वारा प्रकाशित पुस्तक संवाद से विश्वास की एक प्रति भेंट की। इस पुस्तक में उनके 2 वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख पहलों और विकासात्मक गतिविधियों का विवरण संकलित है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने नई दिल्ली में वेबकॉस लिमिटेड की प्रबंध निदेशक शिल्पा सचिन शिंदे से मुलाकात कर उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की समीक्षा की। सांसद ने बताया कि धीमे गति के कारण वर्तमान निर्माण कंपनी का टेंडर रद्द कर अक्टूबर तक नई एजेंसी चुनी जाएगी। अक्टूबर 2027 तक मंडल डैम का कार्य पूरा होने से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी। बोकारो पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए माराफारी थाना क्षेत्र से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। राज्य में आज श्रावण मास की पहली सोमवारी के अवसर पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य के विभिन्न देव स्थानों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में मुख्य सावन और बंगला सावन के दुर्लभ संयोग के कारण तड़के सुबह से ही लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं।
3: बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष से आज पूरा झारखंड शिवमय हो गया है। श्रावण की पहली सोमवारी पर राज्य के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह की पहली किरण के साथ ही जलार्पण शुरू हो गया। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर चुके हजारों कांवरिया कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। वहीं उपराजधानी दुमका के बासुकीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच हजारों भक्तों ने शिवलिंग पर अर्घ के माध्यम से जल चढ़ाया। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने बताया कि भारत द्वारा जीते गए कुल 13 स्वर्ण पदकों में से 8 पदक महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें 5 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक हासिल किए। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। अभी बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहां का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जो आपको लगे भाई कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
1: जी,
2: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे, वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है। हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है।
2: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
2: जी,
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
2: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं ना।
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
2: बिल्कुल।
1: तो आज अशिक्षित हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
2: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं।
1: हाँ।
2: और इस दूध में जो जैसे आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
1: हाँ।
2: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
1: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
2: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
1: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव

0: होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रॉल की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सफेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए यानी उसके विकास के लिए सभी जरूरी चीजें होती हैं।
1: बिल्कुल, और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता
0: हाँ।
1: है उसको कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
0: बिल्कुल,
1: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो जाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं
1: जी,
0: वो।
1: और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी हैं और उनके पास परिवार को उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
0: तो चलिए अब गीत सुन लेते हैं।

0: इतने बड़े जहां मैं तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ।
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में कि ये प्रक्रिया, स्तनपान की जो प्रक्रिया है, शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है, और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई, और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
0: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा, जैसे आपने कहा ना कि इसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो जीवन धारा भी है। इससे न केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीजों की जब कमियां आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते।
1: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा, इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
3: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की इस सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
4: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
5: जी, आपको अधिकार।

0: दोपहर ढलने पर चार पांच आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
1: रुको, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
0: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
2: इस बुढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
1: जी,
2: ये क्या बात है?
1: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
2: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
1: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा ले, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
2: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
0: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
3: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
1: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
2: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
1: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
0: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं, और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
2: क्या बात है मनोहर सिंह?
1: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
2: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
0: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे, तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो तीन तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
1: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की। राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
3: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
2: क्यों मनोहर, अब रुपए कहां हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
1: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
2: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
0: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
3: ठाकुर साहब, ये अंगूठी एक तोले की है,

0: आपके रुपए इससे निकल आवेंगे। आप यह अंगूठी ले जाइए। इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं। यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
1: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
2: ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे। अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
1: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
3: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं। तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं। ये बेचारे हैं क्या चीज।
4: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह, जी श्याम, तेजा सिंह, सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
5: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है। तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
6: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जैन जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल।
5: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है, तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
6: बिल्कुल।
5: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय होने
6: विषय है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन, क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
5: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर, तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
6: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: कि क्या क्या
1: क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ता रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहां से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात,
0: कई बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल, है ना?
0: बहुत सही कह रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कम्फर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, इसीलिए टालमटोल जब वो जानेंगे ना फायदे, टालमटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टालमटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया या इसका आनंद होता क्या है, ये भी कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे दुकान पे ले जाए जहाँ पे इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती है, या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
0: और दीपा, विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव चुमंतर, और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीजों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल, और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है। वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है, और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें, सुनने में अजीब जरूर लगेगा लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता यह है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल, जहां एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहां से समय निकालें, लेकिन वो चीज जब हमें रुचि देने लगती है और मजा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वही उस चीज के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
1: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

0: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है
1: बिल्कुल।
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
1: बिल्कुल, चीजें तो वही होती है, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
1: चलिए।
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा कर लेंगी और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
1: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
0: जी,
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है, प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
1: जी,
0: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं। एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: धड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरन।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।

0: चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, हाँ, है ना। तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता है, कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
2: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का, तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉइड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉइड फोन, और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाते, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है, तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
1: बिल्कुल,
2: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
1: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
2: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
1: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मुड़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है, तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
2: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गर्म भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं। और कच्चा सरसों का तेल लेना है, क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है। थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
1: उसका जो मसाला है जी,
2: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: वही, हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को बेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुरी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को लोक भवन द्वारा प्रकाशित पुस्तक संवाद से विश्वास की एक प्रति भेंट की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में आंदोलन कर रहे जेपीएससी छात्रों को बारिश के बावजूद टेंट लगाने की अनुमति न मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्य सचिव से बात कर तुरंत अनुमति देने की मांग की और ऐसा न होने पर खुद आंदोलन स्थल पर जाकर छात्रों की मदद करने की बात कही है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने आज रांची में ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत की,

0: इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन का जनाधार मजबूत करना आवश्यक है। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने नई दिल्ली में वेबकॉस लिमिटेड की प्रबंध निदेशक शिल्पा सचिन शिंदे से मुलाकात कर उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की समीक्षा की। सांसद ने बताया कि धीमी गति के कारण वर्तमान निर्माण कंपनी का टेंडर रद्द कर अक्टूबर तक नई एजेंसी चुनी जाएगी। राज्य में आज श्रावण मास की पहली सोमवारी के अवसर पर शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राज्य के विभिन्न देव स्थानों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में तड़के सुबह से ही लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। और गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ सांस्कृतिक आयोजनों और विभागीय प्रदर्शनियों की रूपरेखा पर चर्चा की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
2: जी जी।
1: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
2: क्या बात,
1: शुक्रिया एक बार और।
2: डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
1: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की कांच की
2: जी,
1: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला ब्राउन ब्लू जो भी दिखते हैं उसके पीछे लेंस रहती है, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो 3-4 चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है
2: जी,
1: उसके बाद पीछे का पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
2: बिल्कुल।
1: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया
2: जी।
1: अब ये जो है, जो लेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं
2: जी,
1: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
2: जी, जी।
1: जब तक कि अपनी जिंदगी है, तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है
2: जी, जी।
1: एक सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है
2: जी।
1: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है। ओके, उसको भी ऑपरेशन होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है
2: जी।
1: सभी के लिए अभी ऑपरेशन है और सभी के अच्छे उसके
2: और ये सभी जांच में पता चल जाता है,
1: जांच में पता
2: हो रहा है।
1: ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र की वजह से होता है, जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40-45-50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं।
2: इसकी क्या वजह हो सकती है?
1: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक
2: अच्छा
1: जो आया हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है मेरे हिसाब से, तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग जाए किसी को
2: जी,
1: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है, अगर पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे

0: अगर उनको सुधार हो जाए तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो, या तो क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा।
1: जी
0: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो साल 2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई मोतिया बढ़ गया है।
1: जी
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी
1: जी
0: उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है
1: जी
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: एक चीज जो होती है, जो यहां पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल है, पीछे की कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं,
1: अच्छा
0: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी
0: इन
1: जिंदगी
0: नाइनटी
1: चलता
0: नाइन 100% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी
1: जी।
0: भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके,
1: जी
0: शी इज नाइनटी
1: तो
0: वन
1: इतना
0: ईयर्स ऑफ एज,
1: लंबा वो
0: इतना
1: लेंस
0: अरसा
1: चलता
0: हो
1: है
0: गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
1: जी। बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था, ये
1: अच्छा
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है कम
1: जी
0: दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फिर कोई मल्सिफिकेशन हो मोतिया तोड़ने के लिए, वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर उसको
1: जी
0: तोड़
1: जी
0: के
1: तो उसका
0: निकाल
1: असर
0: के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूँ आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह है, हम
1: जी
0: सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की है, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर
1: बिल्कुल
0: मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को। हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी
1: जी
0: कौन करता है, ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी
0: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको
1: बिल्कुल
0: दृष्टि देने के लिए,
1: करेक्ट
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है,
1: जी
0: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह है, पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है, क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो
1: जी
0: मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है।

0: सही है, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल
0: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया
1: जी, बिल्कुल
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया
1: जी,
0: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहाँ गिरेगा, आंख में जगह कहाँ है,
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा
1: जी,
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है। उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सहलेगा
1: जी,
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई, तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी
1: जी जी।
0: तो सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान
0: जी।
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है
0: जी।
1: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए
0: जी, बहुत जरूरी है
1: जी।
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं
1: जी जी।
0: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फायदा होगा
1: जी,
0: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी की वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके, काफी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना
1: जी,
0: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है
1: जी।
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तुरंत आके वो लेके जाते हैं और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है
1: जी। वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में, लोग उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं।
0: नहीं, बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता
1: जी,
0: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी दिक्कत होती है
1: जी। उनके लिए बहुत लोगों की मदद हो सकती है,
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की
1: जी। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी, लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजरियस है, क्रिकेट बॉल हो कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं, लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टीटी टेबल टेनिस खेलते टाइम, प्रॉब्लम ये है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है
1: जी,
0: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है, तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
1: जी।
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना
1: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता है,
0: बहुत खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहां पे ये
1: फैक्ट्रियां हैं
0: या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं उसके आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के।
1: जी,
0: ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं हजार टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: वो हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव ग्लास
1: नहीं कर सकते लोग।
0: और एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने,
0: ज्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है।
1: हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स,
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल।
0: तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर आइज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, प्रोटेक्टिव ग्लासेस सेफ्टी। अपने देश में अभी तक ये कंसेप्ट,
1: ये छोटे बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के, खास तौर
0: आंखों के, वो रखना बहुत। अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं,
1: जी
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहा है। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
1: जी,
0: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में? जो
0: नहीं, फैशन है उसके आगे गया है, टोपी खरीद लो ऐसी, उसी को खरीदो,
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: हैं? ना ना ना, नो नो नो, नहीं, वो दैट इज, वो कलर ग्लासेस है
1: जी,
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए, जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले।
1: जी,
0: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द, आप टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है।
1: जी जी, जी.
0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है।
1: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में, पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
0: हाँ, काफी टाइम होता है, काफी टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो आंख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए, एक दिन निकल जाए, तो कुछ नहीं कर सकते और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे।
1: जी,
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करनी चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, दो तीन दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में। तो
1: बिल्कुल जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं जरूर से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना।
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन
0: जी,
1: आ
0: जी,
1: रही है।
0: जी।
1: आजकल ज्यादातर बंबई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है।
0: हाँ हाँ
1: और वायरल टाइप ज्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है,
1: तब वहां आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज्यादा,
0: ओहो,
1: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है। अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है।
0: जी,
1: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो
0: जी
1: अपनी आंख को साफ कर रहा है।
0: जी
1: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी,
1: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज
0: चीखे।
1: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया है।
0: तो ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के ऊपर,
1: किसी भी परिस्थिति में। और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
0: ओके,
1: तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आंख को
0: जी,
1: पानी मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
0: जी,
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
0: जी,
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे हैं, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने अरे आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई,
0: दिन में नहीं निकलती,
1: दिन में नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
0: जी,
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी।
0: ओके,
1: जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए।
0: हाँ,
1: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट नहीं नहीं आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं। हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए। क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए, ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था।
0: जी जी,
1: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे
0: लड़कों को भी,
1: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है, और बहुत जलता था मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी सेफ है लेडीज के लिए,
0: जी,
1: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
0: यस,
1: वहां पे लगाइए। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए।
0: हाँ,
1: ये

0: सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आप को अकेले छोड़िए।
1: जी
0: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आपको।
1: जी
0: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
1: नहीं
0: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं। हाँ, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
1: क्योंकि सबसे नाजुक पार्ट
0: सबसे
1: है
0: नाजुक चीज है। बहुत
1: जी।
0: बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते।
1: जी
0: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो, तो दूसरी बात है। नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता।
1: जी
0: वेरी सिंपल।
1: जी
0: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
0: जी।
1: और
0: और
1: ये
0: मुझसे
1: हमें
0: कहा
1: पता नहीं
0: गया है
1: था कि ये
0: कि
1: खतरनाक।
0: योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है, आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है। आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
1: लेकिन
0: समझे?
1: खुली आंखों के ऊपर
0: खुली
1: छींटे
0: आंखों की
1: मारना।
0: वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं आप? वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या? आंख बंद कर रहे हैं, जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आपको आराम आ रहा है।
1: जी
0: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गर्म नहीं रखेंगे, कांदा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी
1: सही
0: वाली
1: है,
0: रखेंगे।
1: सही है
0: तो ठंडा क्या होता है? तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना,
1: जी
0: जब ठंड होता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं हम? बर्फ लगाते हैं ना,
1: जी
0: गर्म थोड़ी लगाते हैं वहां पे। हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना, आपको लग गया,
1: तो
0: आप
1: कुछ
0: गिर
1: ठंडा
0: गए, तो
1: लगा
0: पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना।
1: जी
0: बर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए। आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम, नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है।
1: जी
0: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है। क्यों हो रही है?
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी का
0: सेम
1: असर
0: पानी।
1: है
0: आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट।
1: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहां पर एक गाना सुनते हैं,
0: जरूर।
1: खामोशी फिल्म का गाना। हमने
0: हाँ,
1: देखी है इन आंखों की
0: अरे
1: महकती
0: वाह
1: खुशबू, गुलजार साहब का गाना
0: जी।
1: है।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
0: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
1: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
1: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
1: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
0: जी,
1: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
0: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
1: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
0: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
1: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
0: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी

0: डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
0: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताजा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
3: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे।
0: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर

0: उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
1: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
0: मां तो मां होती है बस। ऐसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
2: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
0: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा लें। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
1: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माताजी ने।
2: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
1: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
2: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
1: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
2: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
0: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता मां। तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उच्छल

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ तीन और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

अब प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना, बोल है हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने चतरा प्रशासन की नई पहल किट योजना के टेंडर पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अभय एंटरप्राइजेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोबारा टेंडर जारी करने के मामले में 31 अगस्त तक का समय दिया है। रेलवे मेल सेवा ने रक्षाबंधन के अवसर पर डाकघरों में 10 रुपए की कीमत वाला विशेष वाटरप्रूफ लिफाफा जारी किया है। रांची में सुपरिंटेंडेंट प्रेमजीत कुमार ने बताया कि विभाग 24 घंटे सेवाएं दे रहा है। व्यापारियों के लिए लॉजिस्टिक पोस्ट और बुक नाउ पे लेटर जैसी डोरस्टेप सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। पद्म भूषण से सम्मानित दिवंगत शिबु सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर कल रामगढ़ के लुकायाटांड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिशम गुरु शिबु सोरेन की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का वहां अनावरण करेंगे। हजारीबाग प्रशासन ने आज सदर प्रखंड के कोर्रा कैंटोनमेंट क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए खास महल के करीब 58 डिसमिल बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण और अस्थायी बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के एम टाइप दुर्गा पूजा पंडाल में आज भूमि पूजन के साथ ही पूजा तैयारी

0: की शुरुआत हो गई। इस वर्ष प्रवीण सिंह सेवा संस्थान की ओर से करीब 70 फीट ऊंची पुरानी हवेली थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जाएगा। और मौसम विभाग ने राज्य में 7 अगस्त तक भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अगले 2 दिनों में राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का भी अनुमान है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02।

निदा ही फिल्म का ये गाना था कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम इवनिंग मेलोडी। सुनवा रहे हैं आपको अब प्रोग्राम में ये अगला गाना। फिल्म का नाम है दे दनादन।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

पंकज जोहर की आवाज में आप सुन रहे थे, ये गाना फिल्म था दयावान। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम इवनिंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुनिए प्रोग्राम का अगला गाना, कुमार सानू की आवाज है, फिल्म का नाम दीवाना।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुने वाले सभी ग्रामीण श्रोता के ममता के दने से प्रणाम जोहार और स्वागत है नी कार्यक्रम में। तो बतावा श्रोता सब ग्रामीण श्रोता हालचाल कैसन हो, खेतीबाड़ी के हालचाल कैसन हो, घर दूरा चेंगा चुटियन सब कैसन हो। हमरा उम्मीद है कि सभी बेस्तरी होती, जैसन कि भाई अभी देख

0: ला मौसम में बदलाव आ रहले है तो सबसे पहले हमनीन के अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देवे के चाहिए ताकि हम बेस रहवे तबे सब कामकाज भी और घर दूरा भी बेस रहते। और जैसे कि बरसात के मौसम आ गए है तो ऐसन में फसल में कीट और रोग लगे के बहुत डर रहो है। ऐसन में जल निकासी और खेत में साफ सफाई बहुत जरूरी रहे है और जल भराव पर रोक लगावे ना बहुत जरूरी है ताकि पौधा के जड़ न सड़े। और पौधा में लगावे समय हमनीन के सही दूरी पर भी ध्यान देवे के चाहिए ताकि हवा और धूप पौधा के मिल सके और खेत में नमी न बनल रहे। अगर नमी बनल रहतो तो ये पौधा लगी खराबी रहे हो। और खरपतवार हटाते रहे के चाहिए ताकि कीट के छिपे के जगह नहीं मिल सके। काहे कि अगर खरपतवार रहतो तो जितना भी बरसात में कीट व्याधि निकलो है सब वो खरपतवार में छिप के और तो मुख्य पौधा के और फल के और फूल के नुकसान कर सको है। एक साथे साथे बरसात में कीट प्रबंधन पर भी ध्यान देवे के चाहिए श्रोता। और रस चूसक कीट और सफेद मक्खी पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मौसम साफ होए पर एकरा में छिड़काव करते रहे के चाहिए ताकि अगर पानी बरसते रहतो तो अगर तू छिड़काव करबा तो छिड़काव के कोई असर नहीं हो तो वो सब पानी में धुल जेतो। और जैविक खाद जैसे कि भाई नीम के तेल नीम के खल्ली एकरा घोल में मिलाकर ही छिड़काव करे के चाहिए ताकि पौधा के नुकसान नए होते। और देखा कि लाइट ट्रैप के जरिया भी कीट के ध्यान आकर्षित करके हमने नष्ट कर सको ये कहे कि अगर लाइट तू लगा दे पर तो सारा कीट वहीं लाइट में बैठ जाए तो और तो पौधा बच जाए तो। और एकरे में रोग प्रबंधन में तू देखा फफूंद नाशक हो है एकरा लगी भी हमने इनके बारी के इसके समय छिड़काव नहीं करे के चाहिए। जब भी छिड़काव करे तो पानी अगर बंद हो रुक जाए और थोड़ा हल धूप जैसा हो जाए तभी छिड़काव करे के चाहिए ताकि जो छिड़काव में जो भी जैविक दवा नीम खल्ली नीम तेल है वो सब पौधा पर असर करके और ताकि कीट और जितना भी फफूंद नाशक है वो सब मिट जाए। तो देखा कार्यक्रम तो शुरुआत हो गए है ग्रामीण श्रोता तो शुरुआत में हम सुनावे ही एगो प्यारा सा गीत और साथे साथे जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

तो देखा अभी हमने सुन लिए जरूरी संदेश और साथे साथे इतना बढ़िया गीत, और अभी के मौसम भी है भाई कि सब किसान भाई बहन सब खेत में रोपा में लग गए थी, जैसे कि अभी बारिश भी बहुत बढ़िया हो गए है। और देखा कि गीत सुनने से पहले हम बात करे ली कि कैसे हमने इन बरसात के मौसम में अपन पौधा के फसल के कीट से बचाइए और रोग जितना भी तरह के है वो लगे से बचाइए। काहे कि देखा बरसात में का हुआ है कि फसल में के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ओकर साथे साथे अनावश्यक तू देखा घास फूस हो गेलो, ओकर साथ तरह तरह के कीट हो गेलो, तो उ सब भी फसल के नुकसान करे के बहुत डर हो जाए। तो एकरा हमने इनके हमेशा से जैसे हम बतेलिए कि भाई निकासी जमीन में रहना बहुत जरूरी है, खेत में, और साथे साथे साफ सफाई भी रखना बहुत जरूरी है, निकोनी हमेशा करते रहे के चाहिए ताकि तो फसल के बढ़वार भी बढ़ते रहो और कीट लगे के भी संभावना कम बनल रहे। और देखा कि बरसात के मौसम में देखा कि धूप और हवा बहुत कम ही होए, कभी पानी कभी धूप, तो ऐसे में ओकरा हवा भी समय पे मिलते रहते साफ सफाई के साथ, और धूप भी पौधा में लगते रहते, और एकर से का होते कि तोर पौधा के कोई नुकसान नहीं होते। तो एक और ओकर साथे साथ तो देखा पा कि पेड़ पौधा तो बहुत जरूरी है पर्यावरण लगी, तो पेड़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, और इसके एकरा हमने इनके बचावे के भी चाहिए। और ये जो पेड़ है देखा हमने इनके ऑक्सीजन शुद्ध हवा और हमने इनके जो भी दिनचर्या में उपयोग होए वाला संसाधन ये सब हमने इनके पेड़ के द्वारा ही मिले हैं। तो ये देखा कि प्रकृति के बहुत अनमोल वरदान है, एकरा हम इनके बचा के रखे के चाहिए। और एक ये जो पेड़ पौधा जो है ये एकर बिना हम इन कोई जीवन के कल्पना नहीं कर सको ही है। और पेड़ के से मुख्य लाभ हमने इनके देखा कि ऑक्सीजन और शुद्ध हवा मिलो है, और एकरा साथे साथे देखा कि जल संरक्षण जो हो है पानी वर्षा के पानी के भी बचाव हो है। पेड़ देखा कि बादल के अपन ओर आकर्षित करके वर्षा में मदद करो है, और अपन जड़ से जल स्तर के बनाए रखो है ताकि अगर पेड़ पौधा नहीं रहते तो वर्षा के पानी इधर से उधर बह जाए तो और कोई रुकाव नहीं रहते, और मिट्टी के कटाव से भी बचावे है ये पेड़ पौधा। और ये पेड़ के जड़ जो मिट्टी के मजबूती से बांध कर रखो है, और जेकरा चलते हैं देखा कि बाढ़ और के संभावना बहुत कम हो जाए है, और हम नीके जो जीवन में जो भी हमने उपयोग करे ही है खाए पिए के देखा कि जैसे फल हो गेलो, सब्जी हो गेलो, अनाज हो गेलो, और देखा कि औषधि जितना भी है हमने इनके ये प्राकृतिक और पेड़ पौधा के से ही मिलो है। यही लगी हम देखा कि बहुत वन जीव जो रहे हैं उन लोग के भी जैसे कि पक्षी हो गए लो वो सब भी पेड़ पौधा में ही आश्रय रहे हैं। तो एकरा लगी हमने इनके पेड़ पौधा

0: के हमेशा बचा के रखे चाहिए, ताकि हम इनके पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। और जैसन कि अभी के मौसम जैसन चल रहे खेती बाड़ी के ओकरा में देखा कि बहुत किसान सब लत्तर वाला सब्जी भी लगावे हथी, तो आज हम ऐसने में एगो भेंटवार्ता लेके अले हिये लत्तेदार सब्जी की खेती, जो हम इनके बतैती कैसे खेती कर रही थी या सफल महिला कृषक उषा कुमारी। तो बिना कुबेर कहले हमने सुने हिये ये जानकारी। आज हम आए हुए चुरचू ग्राम में, यहाँ पर हम एक सफल महिला कृषक से बात करने आए हैं। वो बहुत अच्छी तरह से खेती बाड़ी का काम कर रही हैं, तो हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, साथ में नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो आपका नाम क्या हुआ?
1: हमारा नाम है उषा कुमारी।
0: अच्छा, और आप कितने दिन से खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं?
1: खेती हम लोग का बहुत दिन से चल रहा है।
0: अच्छा, तो बहुत दिन से खेती का काम करे, तो क्या क्या खेती में अभी बाड़ी में लगाए हुए हैं?
1: और भिंडी सब,
0: और भी लत्तर वाला सब्जी
1: लगाए हैं, बोदी,
0: हाँ,
1: बैंगन, मिर्चा,
0: मतलब सब, मतलब बरसाती जितना भी सब्जी है वो सब लगाए हुए हैं।
1: हाँ।
0: तो बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा पैमाने पर आप खेती कर रही हैं। तो सबसे पहले बताइए कि जैसे लत्तर में बोदी, करेला, ये सब लगाए हैं, खीरा भी लगाए हैं?
1: हाँ,
0: खीरा भी लगाए,
1: खीरा भी लगाए हैं।
0: अच्छा, तो कितना जमीन में खेती का काम कर रहे हैं? खेत में अभी साग सब्जी लगाए हैं,
1: एक बीघा होगा। हाँ,
0: तो उसी में सब थोड़ा थोड़ा जगह पर लगा दिए,
1: उसी में सब थोड़ा थोड़ा करके हाँ, लगा दिए हैं सब कुछ।
0: अच्छा, तो ये जैसे करेला और बोदी का जो आप खेती कर रहे हैं, तो वो बीज आप जो लाते हैं, तो वो घर ही का बीज पहले वाला रखे रहते हैं कि बाजार से खरीद के लाते हैं?
1: हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं, पहले वाला खत्म हो जाता है तो
0: हाँ, खराब भी हो जाता है, चीन जाता है, तो बाजार से खरीद के लाते हैं, तो वो उपचारित हो रहता है बीज, दुकान में जैसे उपचार करके देता है ताकि कोई भी बीज खराब नहीं निकले।
1: हाँ।
0: तो ये बीज लाते हैं तो उसको कैसे शुरुआत में लगाते हैं, मतलब उसको अंकुरित करते हैं कि सीधा बुआई कर देते हैं?
1: नहीं, पहले खाद डाल के सीधा ही करते हैं।
0: सीधा कर देते हैं? हाँ। मतलब उसको थोड़ा देर फुला उला
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
0: अच्छा, तो कितना दिन में बीज निकल जाता है?
1: निकल जाता है चार पाँच दिन में।
0: चार दिन में छोटा छोटा?
1: हाँ, निकल जाता है।
0: निकल जाता है। और ये बीज कितना दूरी में लगाते हैं, मतलब बीज जैसे हो लगा ना भाई, उसको बढ़ने का जगह चाहिए, चाहे लत्तर को फैलने का जगह चाहिए, एक एक बीता में?
1: हाँ, एक बीता फरक फरक लगाते हैं।
0: वो एक बीता पर लगा देते हैं, तो बहुत बढ़िया का है कि उसको जगह भी तो चाहिए फैलने हाँ, का ये करने का। तो फिर वो जब कितना दिन में वो बढ़ जाता है, लत टाइप का होने लगता है?
1: होता है वही दो सप्ताह।
0: दो सप्ताह में हाँ, लतर आ जाता है
1: हाँ।
0: तो इसका लत को आप ये करते हैं, उसको मतलब लत इधर उधर ना चल जाए, उसके लिए मचान बनाते हैं क्या?
1: हाँ, गाड़ देते हैं
0: हाँ, ताकि वो एक जगह ही नहीं रहे। और इसमें फूल कब तक लगना शुरू हो जाता है? उसको जैसे फूल जैसे उसमें सब्जी लगने के लिए कितना दिन में आ जाता होगा फूल?
1: पेड़ निकलने के बाद एक सप्ताह के बाद निकल जाता है,
0: निकल जाता।
1: थोड़ा थोड़ा करके
0: हाँ। तो उसको जैसे फूल भी देखिए, बड़ी बरसात का समय है तो देखते हैं कीट वीट लग जाने का डर रहता है, तो फूल उल बचाने के लिए कुछ उपाय करते हैं?
1: दवा लगा देते हैं।
0: अच्छा, दवाई घरेलू दवाई की खरीद?
1: नहीं, खरीद के लगाते,
0: खरीद के लगाते। और घरेलू भी कुछ उपाय करते हैं?
1: हाँ,
0: क्या करते हैं?
1: उसमें ज्यादा कीड़ा हो जाता है तो गोबर डाल देते हैं।
0: अच्छा, वो खाद वाला गोबर?
1: हाँ, कच्चा वाला, वाला नहीं, कच्चा वाला नहीं,
0: कच्चा में तो और कीड़ा हो जाता
1: हाँ।
0: तो और ये जो फूल है उसमें वो फल कब तक निकल जाता है? तुरंत साथ में ही निकलना शुरू हो जाता
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं नहीं,
0: कब निकलता?
1: जाड़ निकलने के बाद वो भी निकल
0: देता
1: है,
0: निकल जाता है। अच्छा, तो ये जब फूल निकलने लगता है तब तो और संभाल के रखना पड़ता होगा भाई, कि अगर जरा सा लत नीचे चल जाता, देखते हैं वो सब्जी बाजार में देखेंगे उसमें दाग आ जाता है, तो दाग आने के बाद वो सब्जी फिर
1: खराब
0: हो जाता, तो कोई खरीदता भी नहीं है। और इसको जो सिंचाई कब करते हैं? इस मौसम में तो पानी रहता ही है, लेकिन फिर भी उसका सिंचाई कितना समय समय पर करते हैं, कब कब?

0: बताते हैं?
1: जब पानी रहता उस समय नहीं करता, जब सूख जाता है तभी देते हैं पानी।
0: तो कितना बार पटवन हो जाता होगा अगर पानी नमी रहे तो? फिर भी जब सूखे, जब ही
1: जब सूखेगा ही तभी।
0: और जब फसल उसका जब लग जाता सब्जी, उसका फिर पटाना छोड़ देते?
1: छोड़ देते हैं, इसका नहीं पटाते हैं।
0: तो ये जब सब्जी लगता है तो उसको कितना दिन में बोदी का और करेला हो जाता है तोड़ने लायक?
1: हो जाता है, एक महीना में निकल जाता है।
0: एक महीना में निकल जाता है ना, बहुत अच्छा बात है। एक महीना में निकल जाता है तो इतना में कितना सब्जी निकल जाता है? कितना सब्जी निकल जाता है?
1: निकलता है 50 से 25 तक
0: निकल जाता है
1: सब।
0: तो फिर इसको घर में बिचौलिया आके ले जाता है कि मंडी में आके बेचती है?
1: नहीं, हम लोग ले जाते हैं बेचने मार्केट।
0: हाँ, उससे ज्यादा फायदा होता है कि ना, बिचौलिया आएगा तो आधा दाम में ले जाएगा,
1: आधा ले जाता
0: है, महंगा में बेच देता है। तो बहुत बढ़िया बात है। और ये जब टूट जाता है तो मतलब सब निकल जाता है बाजार में?
1: निकल जाता है सब।
0: अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। और करेली और बोदी दोनों एक ही तरह से ऐसे ही सब्जी लगाते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो ये इसके अलावा खीरा भी लगाते हैं क्या?
1: खीरा भी लगाते हैं।
0: खीरा और
1: खीरा मिर्चा बोदी सब सब लगाते हैं।
0: अच्छा, तो इन लोग का जैसे ये तो हो गया लत्तर वाला, और ये मिर्चा और भिंडी इसको किस तरह से लगाते हैं?
1: वैसे पहले खाद डालने के बाद ही रोपते हैं।
0: खाद डाल के और उसको जुताई करते होंगे?
1: हाँ, पहले जुताई कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: इसका पूरा अच्छा से मट्टी को से भुरभुरा लेते हैं।
0: हाँ।
1: इसका ऊपर से डाल देते हैं
0: खाद,
1: इसका बाद रोपते हैं।
0: अच्छा, उसका भी दूरी कितना रहता होगा?
1: उसका ही एक बित्ता ही रहता है,
0: एक एक बित्ता में ही रहता है। अच्छा, तो और फिर वो भिंडी बहुत सारे देखते हैं थोड़ा बड़ा पेड़ के बाद फूल उगता है, तो आप कौन वाला लगाते भिंडी? देख के बहुत लोग मतलब पेड़ के साथ ही साथ ही वो पत्ता के साथ फूल निकलना शुरू हो जाता है।
1: हाँ, वो छोटा वाला
0: तो कौन सा लगाते? छोटा वाला?
1: हम लोग छोटा ही वाला लगाते।
0: अच्छा, वो साथ साथ में
1: निकल जाता है,
0: होते रहता है। चलो, बढ़िया बात है। और मिर्ची कौन सा लगाते हैं? ये जो पतला वाला जो मिर्ची होता है वही वाला ना?
1: मिर्ची सब तरह का लगाते हैं।
0: और शिमला मिर्च भी लगाते हैं क्या?
1: हाँ,
0: लगाते हैं। तो उसका तो कुछ अलग ही तरह से रोपाई वगैरह होता होगा ये मिर्चा के साथ? तो उसका पौधा लाते हैं होंगे कि बीज रहता है?
1: नहीं, उसका पौधा ही लाते खरीद
0: के। कहाँ से लाते हैं?
1: मार्केट से।
0: मार्केट नर्सरी जाते होंगे लाने के लिए?
1: हाँ।
0: अच्छा, नर्सरी से जाके पौधा ही ले आते हैं। तो उसमें सारा पौधा निकल जाता है ये शिमला?
1: नहीं, कोई कोई निकलता है, कोई कोई मर जाता है।
0: अच्छा, इतना मेहनत करके इतना सारे सब्जी की खेती उसका पूंजी आप कर रही हैं, और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अकेले करती हैं कि साथ में परिवार लोग मिल के करते हैं?
1: नहीं, हम लोग सब मिल के करते हैं।
0: कि अकेले तो संभव नहीं
1: होगा,
0: है ना? संभव नहीं है कि अकेले कोई भी काम कर सके, इस समय समय लगता है। घर का काम करते हुए खेती का काम करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। और हमको उम्मीद करते हैं कि जो किसान है वो भी इसी तरह से बरसाती सब्जी हुआ ना ये?
1: हाँ।
0: बरसाती सब्जी लगा के और मेहनत करके अच्छे से काम करके खेती बाड़ी का काम करेंगी। और इसके साथ साथ आप तो उषा कुमारी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण श्रोता ये जानकारी सुनकर लाभ उठाएंगे। तो आपका इस कार्यक्रम में आए और समय दें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखा, अभी हमने सुन लिए भेंट वार्ता लतेदार सब्जियों की खेती, और एकर बारे में बतावे थल थी उषा कुमारी। तो उम्मीद करे कि जानकारी सुन के सभी किसान भाई बहन जरूर लाभ उठाए थी और ऐसे ही लतेदार सब्जी की खेती कर थी। तो देखा कि लतेदार सब्जी तो सब किसान भाई बहन सब लगाबे करे हथी और सब जानकार भी हथी। और एकरा साथे साथे देखा हम बात करबे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि देखा कि किसान क्रेडिट कार्ड के बहुत सारा योजना के मुख्य उद्देश्य है किसान के खेती, पशुपालन और मछली पालन लगी समय पर और कम ब्याज पर और आसान तरह से ऋण दिया जाए देवल जाए। और ये योजना के मुख्य उद्देश्य है सस्ता कर्ज किसान के साहूकार और बिचौली के महंगा कर्ज से बचाना है।

और समय पर मदद करना, जैसे कि देखा बुवाई हो गेलो, खाद बीज खरीदे, और सिंचाई के समय तुरंत में कोई तरह के पैसा लेवे में कोई मतलब रुकावट नहीं रहे, और खेती के साथे साथे पशुपालन और डेयरी फार्म और मत्स्य पालन जैसा सहायक व्यवसाय में भी वित्तीय सहायता पूरा करना, यही क्रेडिट कार्ड के मुख्य उद्देश्य है। और जरूरी है कि भाई सभी किसान भाई बहन क्रेडिट कार्ड के प्रयोग करती, और एकर से अपन जो भी काम है, जैसे कि पशुपालन करना है, मछली पालन करना है, चाहे और भी मुर्गी पालन करना है, एकरा लगी तू आसान तरह से क्रेडिट कार्ड से ऋण लेकर और तू छोटा मोटा उद्योग कर सका हो, और एकर से तू भाई साहूकार और बिचौली से भी बच सका है। तो और ई क्रेडिट कार्ड के जो भी चल रहे सरकार द्वारा, तो एकर हम कहिए कि भाई एकर हमेशा सभी किसान भाई बहन के लाभ उठावे के चाहिए, और जिनके जानकारी नहीं है वो भी अपन आस पड़ोस गांव में जो भी है भाई बंधु जो खेती बाड़ी कर रही थी है, उनकर से जानकारी लेकर और क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी लेकर और ओकर से लाभ उठावे के चाहिए, ताकि उन लोग के खेती बाड़ी के काम कभी नहीं रुके। तो उम्मीद करें कि कार्यक्रम आज के सभी किसान भाई बहन के बेस लगले हो। तो अब बातचीत करते करते हमरा जाए के बेरा भी हो गए कार्यक्रम से, तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से ममता के अनुमति दा। जोहार, नमस्कार।

नमस्ते, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में ये शाम के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने आगामी 6 से 12 अगस्त तक होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर आज रांची में उच्च स्तरीय बैठक की। स्पीकर ने अधिकारियों को सदन के प्रश्नों के उत्तर और विधेयकों की प्रतियां समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आदिवासी छात्र एकता की केंद्रीय कमेटी ने असम में रह रहे संथाल, हो, मुंडा और उरांव समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में संगठन ने सीएनटी और एसपीटी एक्ट सहित जनजातीय भूमि संरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की अपील की है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न आपदाओं से संबंधित कुल 12 मामलों में अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई। इसमें सड़क दुर्घटना में मृत्यु के 5 और आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त मकानों के 7 मामले शामिल हैं। हजारीबाग के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इचाक में आज खाद्य सुरक्षा टीम ने औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के तहत विद्यार्थियों को

0: जाने वाले चावल, दाल, आटा और चूड़ा के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। खूंटी के प्रसिद्ध आमरेश्वर धाम में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही कांवरियों ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 16वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने प्रवेश कर लिया है। एक रोमांचक मुकाबले में झारखंड की टीम ने दिल्ली को 4-3 से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह सुरक्षित की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना।

मैंने आप सभी को श्रावण माह के पहले सोमवार की शुभकामना। मैंने ये श्रावण मास हमारी भारतीय संस्कृति और आस्था का अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। यह भगवान शिव की आराधना का विशेष समय है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना, जलाभिषेक, भजन कीर्तन और व्रत का विशेष महत्व रहता है। सावन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बहनों, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का भी संदेश देता है। वर्षा ऋतु के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेत खलिहान हरे हो जाते हैं, मन उनमें जीवन आ जाता है और किसानों के लिए तो यह मौसम नई उम्मीद लेकर आता है। इस महीने अनेक स्थानों पर कांवड़ यात्रा, लोकगीत, झूले और पारंपरिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। सावन हमें प्रकृति संरक्षण, प्रेम, संयम और पारिवारिक एकता का संदेश भी देता है।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बहनों, आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम अंगना। और अब बहनों, आज हम बात करेंगे, आज है विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर मां का पहला दूध, शिशु का पहला टीका क्यों माना जाता है और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने का महत्व। तो बहनों, मां के स्तन का पहला पीला और गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, नवजात शिशु के लिए अमृत के समान होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में रोगों से लड़ने वाले तत्व, प्रोटीन, विटामिन और एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे को संक्रमण से बचाते हैं। यही कारण है कि इसे शिशु का पहला प्राकृतिक टीका कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के पहले एक घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। इससे शिशु को आवश्यक पोषण मिलता है, माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होता है और माँ के शरीर से रक्त स्राव भी कम होने में इससे सहायता मिलती है। मैंने जीवन के पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही शिशु के लिए पर्याप्त होता है। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या अन्य कोई भी आहार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विश्व स्तनपान सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि प्रत्येक माँ को स्तनपान के लिए सही जानकारी, सहयोग और सम्मान मिलना चाहिए ताकि हर बच्चे को जीवन की स्वस्थ शुरुआत मिल सके। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम में महिलाओं में कुपोषण की समस्या और उसके समाधान पर आधारित एक उपयोगी वार्ता। आइए सुनते हैं ये पुनर्प्रसारित वार्ता। वार्ताकार है प्रीति कुमारी।
1: किसी भी महिला को अपने

पौराणिक कार्य करने, बीमारियों की रोकथाम तथा सुरक्षित व स्वस्थ प्रसव के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी पूरे संसार में किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की तुलना में महिलाओं को कुपोषण का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। इसके कारण थकावट, कमजोरी, अशक्तता और बुरा स्वास्थ्य हो सकता है। भुखमरी और अच्छा भोजन न खा पाने के अनेक कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण है गरीबी। गरीबी रेखा का सबसे बड़ा कुप्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाहे खाने के लिए कितना भी भोजन हो, महिलाओं को सबसे कम भोजन मिलता है। महिलाएं तभी भोजन करती हैं जब पुरुषों व बच्चों ने खा लिया हो, अर्थात वे सबसे अंत में खाती हैं। इसलिए भुखमरी तथा कुपोषण की समस्या का तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता है जब तक कि जमीन व अन्य संसाधनों का न्यायपूर्वक वितरण नहीं होता है और महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। इन सब के बावजूद अनेक ऐसी बातें हैं जिनका पालन करके लोग कम पैसे में भी बेहतर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यथासंभव पौष्टिक भोजन खाकर वे अपनी सामर्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं और जब लोगों का पेट भरा होगा तो वे अपने परिवार व समुदाय की आवश्यकताओं पर ध्यान लगा सकते हैं और उनमें परिवर्तन लाने के लिए कार्यरत हो सकते हैं। विश्व के अधिकांश भागों की तरह भारत में भी अधिकतर लोग लगभग हर भोजन में कोई सस्ता मुख्य खाद्य पदार्थ खाते हैं। क्षेत्र पर निर्भर करते हुए यह गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा या आलू हो सकता है। यह मुख्य खाद्य पदार्थ ही शरीर की अधिकतर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन केवल यह मुख्य खाद्य पदार्थ अकेले ही व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य सहायक खाद्य पदार्थों की प्रोटीन्स, जो शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, विटामिन व खनिज तत्व, जो शरीर की रक्षा व मरम्मत के लिए चाहिए, तथा वसा, चिकनाई के लिए, और चीनी, जो शक्ति या ऊर्जा देते हैं, की प्राप्ति के लिए आवश्यकता पड़ती है। सबसे पौष्टिक भोजनों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इनमें कुछ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ तथा विटामिन युक्त ताजे फल व सब्जियां अवश्य होती हैं। प्रतिदिन आपको वसा व चीनी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन न मिल पाने की समस्या है तो अच्छा यही होगा कि आप कम भोजन खाने की बजाय वसा व चीनी युक्त खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाएं। एक महिला के स्वस्थ रहने के लिए सभी खाद्य पदार्थ खाने की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी आदत के अनुसार एक मुख्य खाद्य पदार्थ खा सकती है और उसके साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध जितना अधिक हो सके खाद्य पदार्थ खा सकती है। ऐसे 5 महत्वपूर्ण विटामिन व खनिज हैं जिनकी महिलाओं को आवश्यकता होती है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं। ये हैं लौह तत्व, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयोडीन तथा विटामिन ए। लौह तत्व, इस तत्व की खून को स्वस्थ रखने व एनीमिया, रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए आवश्यकता होती है, विशेषतः उन वर्षों में जब उसे माहवारी हो रही होती है या फिर जब वह गर्भवती हो। इन खाद्य पदार्थों में लौह तत्व काफी मात्रा में होता है, जैसे फलियां व मटर, अंडे, मछली मांस, विशेषतः जिगर, कलेजी व गुर्दे, मुर्गे का मीट, रागी, बाजरा। इन खाद्य पदार्थों में भी थोड़ा बहुत लौह तत्व होता है, जैसे गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, गुड़, गहरे हरे रंग वाली पत्ता गोभी, आलू, गोभी, दालें, शलगम, सूरजमुखी व कद्दू के बीज, अनानास, सूखे मेवे, विशेषकर खजूर, आड़ू तथा किशमिश। आप और अधिक लौह तत्व प्राप्त कर सकते हैं यदि आप लोहे के बर्तनों जैसे कि कढ़ाई में खाना पकाएं। खाना पकाते समय अगर आप उसमें टमाटर या नींबू का रस, जिसमें काफी मात्रा में विटामिन सी होता है, डाल दें तो लोहे के बर्तन से और अधिक लौह तत्व खाने में मिल जाएगा। शरीर को स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है।
फोलिक एसिड की कमी से

महिलाओं में एनीमिया तथा नवजात शिशुओं में गंभीर समस्याएं हो सकती है, इसलिए गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड का मिलना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। फोलिक एसिड के अच्छे स्रोत ये हैं: गहरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, जिगर, मूंगफली, अंडे, मछली, मशरूम, मांस, मटर व फलियां, संपूर्ण अन्न। हर मनुष्य को मजबूत दांतों व हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। महिलाओं व लड़कियों को अतिरिक्त मात्रा में कैल्शियम चाहिए। बचपन में लड़की के कूल्हे की हड्डी की चौड़ाई को ठीक से विकसित होने के लिए कैल्शियम चाहिए, ताकि बड़ी होकर जब वह गर्भवती होंगी तो उसे प्रसव आसानी से रहे। गर्भावस्था में एक महिला को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे की हड्डी

0: दूध दही पनीर, बादाम, सरसों, झींगा मछली, तिल, रागी, सीताफल, मौसम्बी, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, फलियां, विशेषतः सोयाबीन, चूना इत्यादि खाद्य पदार्थों से अधिक कैल्शियम प्राप्ति के लिए हड्डियों या अंडों के छिलके को कुछ घंटे के लिए सिरके या नींबू के रस में भिगो दें। उसके बाद इस रस को सूप या अन्य खाद्य पदार्थ में प्रयोग करें। जब आप हड्डियों का सूप बना रही हो तो उसमें टमाटर, नींबू का थोड़ा सा रस मिला दें। अंडे के छिलके को पीसकर बारीक पाउडर बना लें और इसे भोजन में मिलाकर प्रयोग करें। भोजन में उपस्थित आयोडीन घेंघा या ग्वाइटर नामक बीमारी, गर्दन के सामने के भाग में मौजूद थायराइड ग्रंथि का आकार का बढ़ जाना तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से रोकथाम करती है। अगर किसी महिला को गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलता है तो उसको पैदा होने वाला शिशु मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो सकता है। ग्वाइटर तथा मंदबुद्धि होना उन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया गया है जहाँ के पानी, भूमि व भोजन में प्राकृतिक आयोडीन की कमी होती है। भारत में पर्याप्त आयोडीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है कि आप नियमित नमक की बजाय केवल आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करें। यह हर जगह उपलब्ध है। कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि झींगा मछली व टैपियोका में भी आयोडीन होता है। विटामिन ए रतौंधी की रोकथाम के लिए आवश्यक है और यह कुछ संक्रमणों से भी शरीर की रक्षा करता है। अनेक महिलाएं रतौंधी, कम रोशनी, हल्का अंधेरा होते ही ठीक से नहीं देख पाना का शिकार होती हैं। वह शायद इसलिए कि गर्भवती होने से पहले ही उनके भोजन में विटामिन ए की कमी थी। जब गर्भधारण के समय शरीर पर जोर पड़ता है तो यह कमी मुखरित हो उठती है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में भी अंधापन हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान विटामिन ए समृद्ध खाद्य पदार्थ खाने से उसके बच्चे को स्तनपान के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिल जाता है।
1: आप सुन रहे थे वार्ता, कुपोषण समस्या और समाधान विषय पर वार्ताकार थी प्रीति कुमारी। ये वार्ता का पुनः प्रसारण था। और अब कार्यक्रम में एक और गीत। गीत के साथ साथ कुछ जरूरी संदेश भी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम बस थोड़ी देर में।

0: ये गाना था उदित नारायण, श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की आवाजों में। कार्यक्रम है फिल्म संगीत और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गाना। अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बाहर आने तक।

0: लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गाना, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।
1: Let's start the fun!

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यन की आवाजें थी फिल्म का नाम हम आपके हैं कौन। कार्यक्रम है फिल्म संगीत और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में प्रोग्राम का ये गाना। फिल्म का नाम है सीता और गीता।

ये था कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:55। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल प्रसारण होगा हमारे रांची केंद्र से।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: Hey girls, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
6: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
6: पिज्जा पार्टी, ये ऑर्डर पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
6: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
9: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचे, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
10: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
9: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
11: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
12: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
11: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
13: हर घर सूर्य घर।
14: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट। राज्य के समसामयिक विषयों पर की चर्चा। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को समय पर जवाब देने के निर्देश। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मौसम विभाग ने झारखंड में 7 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड। राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी के निशानेबाजों ने जीते 24 पदक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के समसामयिक घटनाक्रम और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को अपने 2 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक संवाद से विश्वास की एक प्रति भी भेंट की। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से भी मुलाकात की थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर कम अंक वालों का चयन किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदर्शन के बावजूद किसी भी सरकारी प्रतिनिधि ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात नहीं की है।
15: जिस अभ्यर्थी के 300 में 299 मार्क्स है उसका चयन नहीं, अलबत्ता 300 में 17 मार्क्स जिसका उसका चयन। बड़े मात्रा में नियुक्ति घोटाला हुआ। बाकायदा एक होटल को लीज में लेकर वहाँ एंसर शीट लिखवाई गई और तभी भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनका फ्यूचर खराब हुआ, तो उनको गुलाम कर रहे 10।

0: दिनों से धरने बैठे हैं, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे संवाद करने नहीं दिया।
1: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने आज रांची में ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ गिरफ्तारियों से समस्या का समाधान नहीं होगा और सरकार को जांच की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
2: ये सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच करा रहे हैं, तो सरकार को ये बताना पड़ेगा और बताना चाहिए किस केस का निष्पादन किया है। हमेशा ये माना जाता है कि जिस केस पर सरकार को आगे जाना नहीं है उस सीआईडी के विभाग को छोड़ देते हैं ताकि वो ठंडे बस्ते पर पड़ जाए। चंद अधिकारियों को केवल बुला के पूछताछ और कुछ गिरफ्तारी से ये मसला समाधान होने वाला नहीं।
1: इस बीच कांग्रेस नेता और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने युवाओं के भविष्य को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि 5 अगस्त को पार्टी का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर आयोग में सुधार की मांग करेगा।
3: हम चाहते हैं जेपीएससी इतना मजबूत हो एथिकली मॉरली कि इस तरह की बात भविष्य में झारखंड ऐसे राज्य में ये बात सामने नहीं आए। हमारे पार्टी ने भी तय किया है राज्य के युवाओं के लिए एक टीम कांग्रेस की जाएगी और परमानेंट समाधान क्या होगा उस विषय पर पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखा जाए।
1: विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आगामी 6 से 12 अगस्त तक होने वाले मानसून सत्र को लेकर आज रांची में उच्च स्तरीय बैठक की। स्पीकर ने अधिकारियों को सदन के प्रश्नों के उत्तर और विधेयकों की प्रतियां समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्पीकर ने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में सहयोग की अपील की है।
4: ससमय कोई भी विधेयक जो सदन में लाने के लिए सोचे हैं उसका समय देना पड़ेगा ताकि कि मान्य सदस्यों के बीच हम लोग उसको समय पर वितरित कर सकें। तो हम लोगों ने इस तरह से जो त्रुटि आता है नहीं आए उसके लिए भी उच्च स्तरीय समिति में समझ और सामान्य तरीके से ही विधानसभा का कार्य का संचालन पक्ष और विपक्ष मिलकर करेंगे।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्होंने 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सभी पात्र युवा विद्यार्थियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शिक्षण संस्थानों में विशेष पंजीकरण शिविर और हेल्प डेस्क आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
5: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
6: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
5: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
6: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
5: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
6: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पद्म भूषण से सम्मानित दिवंगत झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर कल रामगढ़ के लुकैया टांड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां दिशम गुरु शिबू सोरेन की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रामगढ़

0: उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि इस अवसर पर एक विकास मेले का आयोजन कर परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा।
1: नीमरा के इस भैया टाणक ग्राउंड में कल टीका कार्यक्रम होगा, इसमें विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम रहेगा। वो पूरे कार्यक्रम को लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग निगरानी रख रहे हैं। लगभग हम लोगों ने कैपेसिटी रखा है 10,000 से 12,000 तक का।
0: रेलवे मेल सेवा ने रक्षाबंधन के अवसर पर डाकघरों में 10 रुपए की कीमत वाला विशेष वाटरप्रूफ लिफाफा जारी किया है। रांची में सुपरिंटेंडेंट प्रेमजीत कुमार ने बताया कि विभाग 24 घंटे सेवाएं दे रहा है। व्यापारियों के लिए लॉजिस्टिक पोस्ट और बुक नाउ पे लेटर जैसी डोरस्टेप सुविधाएं भी शुरू की गई हैं।
2: अपना एक इनवेलप जो है निकाला है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, जिसको की पब्लिक जो है वो जो है काउंटर से किसी भी डाकघर से या फिर रेलवे के काउंटर से ले सकती है। ये वाटर प्रूफ है, ये 10 रुपये कीमत में जो है काउंटर में और सारे पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। इवन की ग्रामीण क्षेत्रों के जो पोस्ट ऑफिस है उसमें भी जो है ये उपलब्ध है। इसको आप स्पीड पोस्ट से या फिर ऑर्डिनरी से आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते।
3: श्रावण
0: आदिवासी छात्र एकता की केंद्रीय कमेटी ने असम में रह रहे संथाल, हो, मुंडा और उरांव समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में संगठन ने सीएनटी और एसपीजी एक्ट सहित जनजाति भूमि संरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की अपील की। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 2.25 लाख कांवरियों ने पवित्र ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर लिया है।
3: श्रावण की पहली सोमवारी को देवघर में श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह 3:05 पटपट खुलते ही शाम के 7:15 तक लगातार श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। पूरा दंडाधिकारी, पुलिस जवान, वॉलेंटियर सभी कतारबद्ध श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराने में लगे हैं। देर रात तक करीब 2 लाख कांवरियों का जलाभिषेक कराने की दिशा में प्रशासन जुटा है। आशीष कुमार अम्बस्त, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर आज देवघर के साथ साथ दुमका के बासुकीनाथ धाम और राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर सहित राज्य के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन द्वारा कांवरियों की सुरक्षा और सुगम जलार्पण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 7 अगस्त तक भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। कल पलामू, चतरा और बोकारो सहित कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। झारखंड ने दिल्ली को 4-3 से हराकर जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला उत्तर प्रदेश से होगा। वहीं 16वें झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी के निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण सहित कुल 24 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट, राज्य के समसामयिक विषयों पर की चर्चा। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को समय पर जवाब देने के निर्देश। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मौसम विभाग ने झारखंड में 7 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड, राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी के निशानेबाजों ने जीते 24 पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
7: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सुगंध, क्या हो रहा है?
7: बिल हो रहा है।
6: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
8: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी जिले में इस हफ्ते अड़की क्षेत्र के तिनतिला में भारी बारिश से बहे पुलिया की अस्थायी मरम्मत का कार्य तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा के निर्देश पर कराया गया। मरम्मत की बात फिलहाल लोगों के आवागमन की सुविधा से ग्रामीणों को राहत मिली है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ 94 बटालियन ने 88वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। खूंटी में एसीबी ने बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सह महिला थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक सपना सुलेखा को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इधर सावन माह में आमरेश्वर धाम में प्रत्येक रविवार और सोमवार को होने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल की है। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया,
2: कुछ फोर्सेस को बढ़ा के ही देंगे जितना पिछले वर्ष दिया गया था, और लोगों ने कुछ कुछ समस्याओं के बारे में बताया कि जैसे पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था के बारे में, तो उस जगह को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जो पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, सब लोग अपना फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो भी है उसको वहीं पे खड़ा करें।
1: बारिश के मौसम में होने वाली मलेरिया, डेंगू, डायरिया समेत अन्य बीमारियों से बचाव को लेकर खूंटी के सिविल सर्जन डॉक्टर ललित रंजीत ने कहा,
3: इस समय पब्लिक को बहुत सावधानी से रहना है। पेयजल तो सुरक्षित लेना ही है। डायरिया से बचने के लिए हम ये कहेंगे कि डाड़ी का, तालाब का, ये सब का जगह का ना पिए। जो सप्लाई पानी है, चापा नल है, उसका पिए। इसके अलावा पानी को गर्म करके कम से कम 10 मिनट उबाल करके उसको घड़े में ढक करके रख दीजिए और उसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो इससे हम कम से कम डायरियल डिजीज से बच सकते। रहा सवाल मच्छरों का और ये सब का, तो ये इस मौसम में बढ़त होती है और इस कारण से मलेरिया का प्रभाव भी बढ़ता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि घर के आसपास या कहीं भी पानी जमा न होने दे।
1: सिविल सर्जन डॉक्टर ललित रंजीत ने बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में होने वाले सर्पदंश को लेकर जरूरी सुझाव दिए और सर्पदंश में झाड़ फूंक से बचने की सलाह भी दी। सिविल सर्जन ने कहा,
3: सर्पदंश की भी घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और इसमें काटने के बाद कभी घबराना नहीं चाहिए, और खासकर जैसे लोग पहले करते हैं कि कपड़ा या रस्सी बांध लेते हैं या उस जगह पे काटते हैं या चूसने का कोशिश करते हैं, तो ये सब नहीं करना है। मरीज को शांत रखना है, मरीज को सोने मत दीजिए, उसको घबराहट नहीं हो। मतलब रक्त प्रवाह अगर बढ़ता है तो ये जहर का प्रभाव बढ़ेगा, और झाड़ फूंक चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़िए, उसको जल्द से जल्द नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसको पहुंचाएं।
1: सावन के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सावन मेले का विधिवत शुभारंभ किया और परिवार संग बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा,
4: यहाँ श्राद्ध लोग आए अपने पवित्र जल अर्पण कर सुख समृद्धि की कामना करें और सभी के घर में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए।
1: खूंटी में बहुप्रतीक्षित तुपुदाना कुंदी बरटोली फोरलेन NH20 एवं खूंटी बाईपास निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार और अनूप साहू बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का आग्रह किया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: अब वक्त है कार्यक्रम आपकी योजना का। संकलन और वाचन प्रकाश कुमार राणा, प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।
1: नमस्कार। स्वास्थ्य किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां सामान्य उपचार के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, आवश्यक जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, इसकी क्या भूमिका है और यह आम जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए आज हम आप पहुंचे हैं सदर हजारीबाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आइए जानते हैं यहां से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में।
2: मैं डॉक्टर अमरेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदर हजारीबाग से हूँ। वहाँ पदस्थापित एवं कार्यरत हूँ। अभी हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरे अंडर में 2 PHC हैं, 16 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। अभी हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और PHC में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से जो भी संबंधित है, जैसे कि ANC हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, डिलीवरी हो गया, उससे संबंधित सभी सुविधाएं सभी सेंटर्स में मेरा उपलब्ध है। साथ ही साथ जो इसके अलावा डेंटल के भी मेरे यहाँ डॉक्टर्स हैं, वो डेंटल का भी कार्य देखते हैं। हमारे यहाँ आयुष के 4 चिकित्सक पदस्थापित हैं जो आपको स्कूल में विजिट करते हैं, आंगनबाड़ी में विजिट करते हैं और वहाँ बच्चों का जांच करते हैं, हम चिकित्सीय लाभ भी प्रदान करते हैं और जो जरूरत होता है उसको रेफर भी किया जाता है। अभी तत्काल में मेरे यहाँ 3-4 प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जैसे से एक प्रोग्राम चल रहा मेरा नन्हा सा दिल। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष के सभी बच्चों का सत्य साई हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ से आए हुए चिकित्सक दल जांच करते हैं और जांच करने के बाद अगर किन्हीं में कोई भी जन्मजात हार्ट की बीमारी का पता चलता है तो उनका उन लोग लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं। लाइन लिस्टिंग करने के बाद उनका इको करेंगे, इको के बाद उनको अगर उसमें बीमारी निकलेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से ले जाकर सत्यसाई हॉस्पिटल में उनका इलाज होगा, उनका ऑपरेशन होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बुलाया भी जाएगा और जब जब उनका फॉलोअप भी होगा तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग बुलाते हैं, करते हैं। इसके अलावा हमारे यहां अभी 100 डेज TB प्रोग्राम भी चल रहा है, उसके अंतर्गत पूरे सदर ब्लॉक में 52 गाँव का चयन किया गया है। मतलब यहां पहले TB के या तो केसेस थे या वैसे पॉपुलेशन का वास है जिनमें TB होने की संभावना ज़्यादा है, तो वैसे तरह से सभी जगह हमारे यहाँ कैंप लग रहा है। जैसे कि आज भी मेरे यहाँ पौता में कैंप लगा हुआ है जिसमें कि TB के जांच के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य शिविर भी लगा हुआ है। आयुष्मान आरोग्य शिविर का मतलब हुआ कि हम लोग वहाँ पर NCD का भी जांच कर रहे हैं, जितने भी गैर संचारी रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे आपको अन्य भी जो बीमारियां हैं उनका भी वहाँ जाँच होता है और मुफ्त में उनका इलाज भी और परामर्श भी दिया जा रहा है। वहाँ पर आपको मुफ्त में एक्सरे की जो पोर्टेबल जो एक्सरे है वो मशीन आई हुई है, उनके द्वारा वहाँ जो भी 14 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं या लाभार्थी हैं उनका एक्सरे किया जा रहा है और साथ साथ जो भी आपको लक्षण वाले हैं, लक्षण में जैसे हो गया जिन्हें को 2 सप्ताह से खांसी हो, जिनको 2 सप्ताह ज़्यादा बुखार हो, जिनका वजन घटता हो, जिनको खांसी में खून आता हो, जिनको थकावट लगता हो, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो या जिन्हें को गला में गांठ उठो, जो भी चीज़ हो, उन सब का भी वहाँ जाँच किया जा रहा है और जाँच में जिनको लक्षण है उनको वहाँ तत्काल उनका बलगम लिया जा रहा है और उसको TRUNET और नेट से जांच किया जाएगा और जांच में पॉजिटिव आने पर उनको TB की दवाइयां चलेगी। साथ साथ हम लोग एक और जांच करते हैं CYTB स्किन टेस्ट। इसमें वैसे जो लाभार्थी हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है उनका हम लोग जांच करते हैं और इससे पता चलता है कि उनमें TB का इन्फेक्शन है कि नहीं, बीमारी नहीं, लक्षण की बात नहीं है। अगर उनमें संक्रमण है तब भी हम लोग उनको TPT देते हैं, माने TB प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं जिससे कि उनका सही से समय पर इलाज हो और हमारा जो अभी जो लक्ष्य चल रहा है कि TB मुक्त भारत के अंतर्गत TB मुक्त झारखंड और TB मुक्त पंचायत को बनाना है, उसको हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने जैसे 15 और 18 तारीख को हमने राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया जिसमें कि 1 से लेकर 19 तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को हम लोग कृमिनाशक दवाई खिलाए हैं और 28 तारीख से लेकर 30 तक एक नेशनल वाइड प्रोग्राम चल रहा है हमारा पल्स पोलियो, जिससे कि सभी लोग जानकार है, सभी लोग जान रहे हैं। पिछला जो हमारा पल्स पोलियो हुआ था

0: कारण और बाद में डिलीवरी केस में दिक्कत होगी, उन लोग हाई रिस्क को हम लोग अलग से महीना के अंतिम बुधवार में हम लोग उनका भी जांच करते, और जांच यहाँ मुफ्त में होता है। यहाँ जांच के अलावा उनका जो भी आपको अल्ट्रासाउंड हो गया चाहे ब्लड की जांच हो गया वो हम लोग यहाँ मुफ्त उनको सेवाएं देते हैं, और ये सेवाएं आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के साथ साथ हमारा पीएससी में भी उपलब्ध है। हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें बहुत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मेरे सीएचओ वहीं रहती है
1: जी,
0: तो वैसी स्थिति में वहाँ तो मिलता ही मिलता है। अभी जो बरसात का समय आने वाला, अभी तो देखिए मलेरिया नाशक माह मना रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग को बचना ही है। जैसे फुल बांह, फुल पैंट जो पहनना, हमको कपड़ा पूरे बदन को ढक के हमको पहनना ही है। साथ साथ कहीं भी बारिश का पानी जमा हो रहा है चाहे टायर में, गमला में, कहीं भी चाहे कूलर में, उसको समय पर बदलिए, उसको पानी को हटाइए, वो हमको देखना है। अगल बगल को साफ सफाई करना हमको है। जहाँ भी गंदा पानी, जहाँ की चापाकल का पानी पी रहे हैं या कुआं का पानी पी रहे हैं, उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर डलवाइए और चापाकल का पानी आप छान के पीजिए।
2: आज की इस बातचीत में हमें यह समझने का अवसर मिला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाकर हम स्वयं और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। कहा जाता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस भावना को सबसे अधिक साकार करती है यहाँ की नर्सें। स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले हर मरीज की देखभाल, सही समय पर उपचार, गर्भवती महिलाओं की निगरानी, नवजात शिशुओं की सुरक्षा, टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने में नर्सों की अहम भूमिका होती है। उनकी मेहनत, संवेदनशीलता और समर्पण से लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। आइए आज जानते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र की नर्स की क्या भूमिका होती है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है।
3: नमस्कार, मेरा नाम ममता कुमारी है। मैं एक ANM हूँ। मैं मेरू आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। यहाँ पे हर चीज़ का निशुल्क उपचार होता है, जैसे BP शुगर हो गया, ये सब चीज़ का जांच होता है, मलेरिया टेस्ट होता है। यहाँ पे मुफ्त में दवाई दी जाती है। किसी तरह का भी कोई लोकल प्रॉब्लम हो, जैसे छोटा मोटा बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब का यहाँ पे इलाज होता है। यहाँ गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे चिकित्सा के रूप में बहुत सारे लाभ मिलते भी हैं, जिसका वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। जो बुजुर्ग नहीं चल पाते हैं उन लोगों को स्टिक, वॉकर, ये सब वगैरह भी यहाँ से वितरण किया गया है। और बहुत सारे प्रोग्राम है किशोर किशोरी को लेके, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका बहुत सारा प्रोग्राम भी चलता है। नमस्कार।
4: मेरा नाम अनीता कुमारी है और मैं यहाँ मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक नूरा में ANM हूँ। और हमारे यहाँ टीकाकरण होता है जन्म से लेकर के 16 साल की उम्र तक। और हमारे यहाँ मतलब दो डॉक्टर भी हैं, एक गायनो और एक आयुष की मैम है। और बच्चे लोगों को भी इलाज होता है यहाँ पे। गर्भवती जो होती है उनका भी यहाँ TT का इंजेक्शन पड़ता है और आयरन की दवा और ये कैल्शियम, ये सभी दवा उनको मिल जाती है। ये सुविधाएं उपलब्ध होती है यहाँ पे। और बच्चे लोगों को जो फीवर वगैरह आता है वो सबकी दवा भी यहाँ पे मिल जाती है। 0 से लेकर के जो BCG होता है उस समय से लेकर 16 साल के इस तक जो पड़ता है इंजेक्शन, टीकाकरण, वो सारे सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। जो मौसमी जो बीमारियां आती है ये सबसे बचाव के लिए तो टीकाकरण मतलब किया जाता है, तो उससे बचाव के लिए, संक्रमण से बचाव के लिए, ये सारी मतलब की बचाव के लिए सारा टीकाकरण यहाँ पे पड़ता है। और गर्भवती माता को टिटनेस का जो मतलब होता है वो बच्चे को और माँ को दोनों की सुरक्षा के लिए टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे जो मैडम लोग रहती है ना, डॉक्टर मैडम जो है, वो यहाँ पे जैसे कि नूरा से या फिर और भी कहीं से बेकर कोई आते हैं तो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह उपलब्ध है, चेकअप वगैरह होता है और जांच वगैरह भी होता है यहाँ पे। हमारे यहाँ LT है और ANM है, सब है, तो हर प्रकार की मतलब जो सुविधाएं हो पाती है यहाँ पे सब हो जाती है।
5: हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है खिरगांव हबीबी नगर से। मेरा नाम काजल कुमारी हुआ। हम आंगनबाड़ी केंद्र में जो गर्भवती न्यू मैरिड रहती है उसको जाके डोर टू डोर प्रशासन करते हैं कि ताकि वो आए और आंगनबाड़ी से जुड़े। आंगनबाड़ी में जुड़ने में बहुत सारी लाभ मिलती है, जैसे कि NC जांच हो गया, आयरन गोली, कैल्शियम टैबलेट, ये सब हम लोग की सुविधा।

0: आंगनबाड़ी से मिलती है। वो लोग जानते हैं कि हम आंगनबाड़ी क्या करते सही है, इनके द्वारा ही हमको संपर्क करती है या फिर हम ही उनको, न्यू मैरिड रहती है चाहे बच्चा रहता है, हम जानते हैं कि उसके घर में छोटा बच्चा है, तो हम उनको घर में जाके बुला के बोलते हैं कि आपको सुई पड़ेगा, आप आइए। जैसे कि अगर सदर में हुआ, सदर सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो वहीं से बन जाता, हम लोग खुद बनाते हैं, और अगर नगर प्राइवेट में हुआ तो नगर निगम की द्वारा ही बनती है। सदर हॉस्पिटल में हुआ तो वहां से 1000 प्रत्याशन राशि मिलता है, उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र भी वहां से मिलके बनता है और वहां एक पैसा नहीं लगता है।
1: सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में स्वास्थ्य केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार नियोजन सेवाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क या रियायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य केंद्रों की नर्सें और अन्य स्वास्थ्य कर्मी इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराते हैं और उन्हें समय पर सेवाओं का लाभ दिलाने में सहायता करते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इस सरकारी योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए और उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं तभी सफल होती है जब हर व्यक्ति तक उनका लाभ समय पर पहुंचे। जागरूक नागरिक और समर्पित स्वास्थ्य कर्मी मिलकर एक सशक्त, खुशहाल और समाज का निर्माण करते हैं। स्वस्थ समाज का निर्माण केवल सरकार से नहीं बल्कि हर नागरिक की जागरूक पहल और जिम्मेदारी से होता है। स्वस्थ समाज का निर्माण केवल सरकार से नहीं बल्कि हर नागरिक की जागरूक पहल और जिम्मेदारी से होता है। जब लोग स्वयं आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं तभी बदलाव की नई शुरुआत होती है। आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।
2: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आपकी योजना प्रस्तुति थी प्रकाश कुमार राणा की, प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

0: पवन का महीना, पवन करे शोर।
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
0: पवन

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों को आप सुन रहे थे मिलन फिल्म में। और अब कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और जॉली मुखर्जी की आवाजें हैं, फिल्म का नाम आईना।

ये जवानी है दीवानी फिल्म का ये गाना था अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में। लीजिए अब सुनवा रहे हैं आपको रॉय फिल्म से अगला गाना, कुनिका कपूर मीत ब्रदर्स और साथियों की आवाजें।

हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यही समाप्त होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 7:59 हो रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों।

अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया।

इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई की हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद MSME क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए

कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से, अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगे, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उप सभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा

0: सभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:15 हो रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना है राजपूत फिल्म से, सुनना चाहा है आप सभी ने। महादेव घाट अमलेश्वर से आप है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली। और एक और खत है अगला, बनोसा दुर्गापुर से आप है यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान और माधवी चौहान।

किशोर कुमार की आवाज में राजपूत फिल्म से लिया हुआ ये गाना आपने सुना। कार्यक्रम है आपकी चाहत और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुनाते हैं दोस्तों अब अगला गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम नया दौर और सुनना चाहा है आप सभी ने। जिमरी तिलैया से आप है जगन्नाथ प्रसाद साहू और चिपाकला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा, रुक्मिनी, प्रियंका, दीपिका और नूरा हजारीबाग से आप है बिहारी महतो, रविंद्र कुमार, अरविंद कुमार, निखिल कुमार, बालेश्वर प्रसाद, उमेश प्रसाद कुशवाहा, बॉबी कुमार और डब्लू कुमार।

नया दौर फिल्म का ये गाना था मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। और अब प्रोग्राम का अगला गाना सुनिए, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें हैं, रिफ्यूजी फिल्म का ये गाना है। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनना चाहा है। मड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया, गोलू, भोला, इनके मम्मी पापा और ढेर सारे साथी। और राजनंद गांव से आप है याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से आप है रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। साथ ही ओल्ड लिसनर ग्रुप बरकाकाना से आप है मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहीन सुल्ताना, अफजाल ताज और तस्नीम।

और दोस्तों, अब सुनवा रहे हैं आपको उदित नारायण, साधना सरगम और साथियों की आवाजों में राम जाने फिल्म का ये गाना सुनना चाहा है आप सभी ने। पंच मंदिर रोड से आप हैं नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। और नवाटोला भीखनपुर से आप हैं गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान। साथ ही दिल्ली शहर मोरी गेट से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगा हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:44 हो रहे हैं। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार News@9 और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से और 10 बजे हम आपके साथ होंगे कार्यक्रम रजनीगंधा के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया

0: जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
1: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
2: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
4: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
5: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम ओडिशा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय

0: का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
2: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
3: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Loksabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister DK Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. Our correspondent has more details.
5: Both the houses of parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. Lok Sabha was adjourned thrice, while the Raj Sabha was adjourned twice. Due to the ruckus, question hour in both the houses could not be taken up. However, amidst uproar, the Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Raj Sabha passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूं।

0: मुझसे किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में, एक बार फिर ए आर कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी।

नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना। सुहानी रात ढल चुकी।

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपरहिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की।

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल।

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था, और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं। बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजे है।

किशोर कुमार की आवाज में महबूबा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। आप सुन रहे कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अगला गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

मोहम्मद रफी की आवाज को आपने सुना राजकुमार फिल्म के इस गीत में। सुनवा रहे हैं अगला गाना शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना फिल्म राजा और रंग से, और अब सुनवा रहे हैं अगला गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज

ये था कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

यह है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से।

साल 1983 की फेमस बायोग्राफिकल फिल्म थी रजिया सुल्तान। आज इसी फिल्म के गीतों को हम आपको सुनवाएंगे आज के कार्यक्रम में। सुनिए प्रोग्राम का ये पहला गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से और आज की फिल्म है रजिया सुल्तान। ये फिल्म आई थी साल 1983 में। निर्देशक थे इस फिल्म के कमाल अमरोही और लीड रोल में थी हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और परवीन बॉबी। दोस्तों ये फिल्म अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम में अगला गाना।

हर कोई चाहता है ख्वाबों से खूबसूरत जिंदगी, क्योंकि ख्वाब हमारी ख्वाहिशों की हसीन तस्वीर होते हैं, हमारी तमन्नाओं से तहरीर होते हैं, और हमारी सबसे हसीन तमन्ना का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत जिसको मिल जाए वो जन्नतों की सैर करे, अगर ना मिले तो दुआ कीजिए खुदा खैर करे।

ये गीत था कब्बन मिर्जा की आवाज में, और इसके पहले जो दो गाने आपने सुने लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में, लीजिए अब सुनिए आशा भोसले, जगजीत कौर और साथियों की आवाजों में ये अगला

इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम एक फिल्म से ही समाप्त होता है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही

0: of Double Delight. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर. स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हो रहे हैं. आज का प्रसारण यहीं तक. कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए दीजिए अनुमति. शुभरात्रि. जय हिंद.